0: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
1: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
2: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
3: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
4: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
5: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी तो बहुत महंगी होगी ना।
5: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट। नो है 8607274999।
1: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
2: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी,
3: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
4: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
6: बोलिए मुझे जीजा जी।
7: क्या जी?
6: क्या आपने लगाई PNG?
7: हाँ जी।
6: क्यों जी?
7: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
6: और सेफ्टी
7: की चिंता स्टॉप,
6: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
7: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
6: हाँ जी
7: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी PNG। कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
6: बिल्कुल सही।
7: तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
6: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
8: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
6: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
8: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
6: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
9: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
10: अरे इसमें क्या है?
9: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
10: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
9: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
10: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
9: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
10: इनका एड्रेस क्या है?
9: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5, गणपति मॉल, भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के अधिकारों की रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाए। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT। मजबूत निर्माण सदा के लिए।
6: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
7: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लास क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
6: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
8: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
9: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
10: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
9: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
10: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
11: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
1: आप सुन रहे हैं 90.8

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
3: हाँ यार।

0: और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
1: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
2: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
3: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
2: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
3: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
2: मैस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
4: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
5: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
4: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहाँ प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
5: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
6: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
8: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी, पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं, बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं, बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिदुड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्ज्वल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
9: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाले 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
10: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
2: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
3: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
2: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
3: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
2: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
1: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
0: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
1: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
11: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के अधिकारों की रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो जो तन मन को भाए तो तन में ज्वरसी आए।
6: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
7: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
8: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी लोगों के लिए या
7: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
9: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों, बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के अधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
6: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
5: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
6: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
5: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
7: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
8: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
7: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
8: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
1: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
0: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
2: अरे कहाँ जा रही हो?
3: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
2: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
3: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
2: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
4: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
5: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
5: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
7: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
8: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा, गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी, आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाले 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: क्या कर रही है?
6: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
5: फिर से? अभी तो गई थी।
6: हाँ, फिर से जाना है।
5: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
6: गाड़ी नॉट इन बजट।
5: अरे, गांधी मोटर्स है ना?
6: गांधी मोटर्स?
5: हाँ, गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
6: तो कब चले?
5: अरे, इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
7: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अल्बर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000101। 444 पर।
8: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
9: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
10: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
11: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, Tommy Hilfiger, Oakley, Prada, Jeez, Essilor Crizal, Vision RX और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
10: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
11: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
10: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
12: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के अधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाए। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाले 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है।

0: कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
3: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्ण मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
2: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
3: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
2: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उजला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
4: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
5: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
4: CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
6: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
7: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
6: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
8: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहे बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
4: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
5: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
7: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
8: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
9: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूँ। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूँ और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
3: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
3: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
3: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
3: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
3: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
10: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
11: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
12: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
3: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
2: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ, 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
13: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
14: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
13: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
14: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: शिक्षण लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरि राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
4: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल विधोड़ी, पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं, बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं, बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों की आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल विधोड़ी का चुनाव नहीं, बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
5: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाले 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
6: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूँ। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूँ और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
7: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
8: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
9: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी,
10: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
11: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
12: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहाँ पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहाँ 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
13: बोलिए मुझे जीजा जी।
14: क्या जी?
13: क्या आपने लगाई PNG?
14: हाँ जी।
13: क्यों जी?
14: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
13: और सेफ्टी
14: की चिंता स्टॉप,
13: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
14: मतलब
13: एक्स्ट्रा खर्चा
14: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
13: हाँ जी
14: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
13: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
14: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
13: बिल्कुल सही।
14: तो आप भी अपनाओ PNG
13: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
15: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
16: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
15: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
16: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
15: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
17: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
18: अरे इसमें क्या है?
17: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
18: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
17: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
18: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
17: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
18: इनका एड्रेस क्या है?
17: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5, गणपति मॉल, भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी, आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल विधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के अधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल विधुड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
5: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
6: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
7: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT मजबूत निर्माण सदा के लिए।
8: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
9: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
8: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
10: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
11: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
12: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
11: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
12: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
13: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिथोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूं। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूं। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूं। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियां हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिथोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाले 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
6: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
5: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
6: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
5: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम साढ़े चार से साढ़े छह बजे तक। गुरुवार अवकाश।
7: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
8: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
7: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
9: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए पार्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907।

0: टायर लेना तो बहुत ही इजी है, पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
3: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
5: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं, बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं, बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं, बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाए। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
6: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाए। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
7: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
8: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल

0: equipped operation theater, digital x-ray, clinical lab, TMT, audiology or speech therapy, fiber optic bronchoscopy, skin prick and blood allergy test. Allergy ka jar se ilaj, hamare expert doctors hain. Medicine, surgery, ENT, head and neck surgery, obs and gyne, orthopedics, oral and maxillofacial surgery, cashless facility, sabhi TPA ke saath. To ab tension mat lo. Apex Hospital, Dharuhera, plot number 5, sector 6. और भिवाड़ी B83 भगत सिंह कॉलोनी. बस एक कॉल या एक विजिट. नो है 8607274999.
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है. कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है. कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है. कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है. और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ. शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी. कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर. ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्सी आए.
2: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेस भिवाड़ी. स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ. और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे. संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेस, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308.
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे. वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं.
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन.
5: हेलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे से श्रोताओं. आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम और आज का ये पल है बेहद खास, क्योंकि आज हवाओं में भी जैसे बांसुरी की मिठास घुली हुई है. मंदिरों में घंटियां गूंज रही हैं, घरों में कान्हा के लिए झूले सजाए जा रहे हैं और हर तरफ बस एक ही नाम सुनाई दे रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण. जी हाँ दोस्तों, आज हम मना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव. वो कृष्ण जो कभी यशोदा मैया की गोद में मुस्कुराते हैं, वो कृष्ण जो गोकुल की गलियों में नटखट शरारते करते हैं, वो कृष्ण जिनकी बांसुरी की धुन सुनकर पूरा वृंदावन जैसे ठहर जाता है, और वही कृष्ण जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी बनकर पूरी दुनिया को कर्म और धर्म का संदेश देते हैं. कितनी खूबसूरत बात है ना. कृष्ण का जीवन हमें एक ही साथ मासूमियत भी सिखाता है और जिम्मेदारी भी सिखाता है. इसलिए आज सिर्फ मंदिर में जाकर भगवान को याद मत कीजिए, अपने जीवन में कृष्ण के विचारों को जगह दीजिए. अगर आपके घर में छोटा सा कान्हा सजा है तो उसे देखकर मुस्कुराइए. अगर घर में कोई आपसे नाराज है तो उसे मनाइए. और अगर किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो जरूर लाइए, क्योंकि शायद यही कृष्ण जन्मोत्सव की सबसे खूबसूरत भावना होगी. तो मेरे प्यारे से प्यारे से प्यारे से लिसनर्स, मेरे साथ एक बार पूरे दिल के साथ बोलिए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. और इसी भक्तिमय माहौल को और भी बरकरार रखने के लिए हम अब सुन लेते हैं प्यारी सी कृष्ण भक्ति धुन, यानी कि यहाँ पर एक प्यारा सा गाना. कहीं मत जाइए, सुनते रहिए हमारा प्यारा सा कृष्ण जन्मोत्सव वाला स्पेशल शो. बस यश यू गया और यू आया लेकर और भी ढेर सारी कृष्ण जी से जुड़ी ढेर सारी बातें.

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: कुकुल की लाडा चली, ओ चली।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
4: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल विधोड़ी, पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं, बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं, बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के अधिकारों की रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल विधुड़ी का चुनाव नहीं, बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
5: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाले 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
6: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने, वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
7: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
8: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
7: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
9: अरे कहाँ जा रही हो?
10: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
9: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
10: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
9: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर टावरू हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
11: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
12: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
13: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
12: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
14: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, कॉल 8058304500।
15: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
16: और भाई साहब, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है एक बार फिर से आपका दोस्त होस्ट RJ यश, यानी कि आपका खुर्राफत यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि आज है कृष्ण जन्माष्टमी। जी हाँ, और आज का हमारा स्पेशल शो भी है कृष्ण जी पर। तो चले भाई साहब, अब हम बात कर लेते हैं जरा सी और। तो दोस्तों, अब जरा कल्पना कीजिए उस रात की, चारों तरफ अंधेरा था और मथुरा की जेल में देवकी और वासुदेव बंद थे और कंस के अत्याचार से पूरी मथुरा परेशान थी। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है तभी उजाले की शुरुआत होती है और फिर वो शुभ घड़ी आई, देवकी की कोख से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण के जन्म की कथा सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, इसमें एक गहरा संदेश भी छिपा है। संदेश ये है कि चाहे परिस्थितियाँ कितने भी कठिन क्यों ना हो, उम्मीद को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कंस के पास शक्ति थी, राज था, सेना थी, लेकिन कृष्ण के पास था सत्य, और आखिरकार जीत किसकी हुई? सत्य की। यही तो कृष्ण की सबसे बड़ी सीख है। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, हम परेशान होते हैं, रास्ता दिखाई नहीं देता, लगता है कि समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसे समय में कृष्ण की एक बात याद रखिए, मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं रहता पार्थ, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, बस हमें अपना विश्वास और अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। आज जब आधी रात को मंदिरों में जन्मोत्सव मनाया जाएगा, घंटियां बजेंगी, आरती होगी और कान्हा के जयकारे गूंजेंगे, तो एक पल के लिए आंखें बंद करके बस इतना कहिए, हे कान्हा, मेरे जीवन में भी सही रास्ता दिखाते रहना। शायद यही सबसे खूबसूरत प्रार्थना होगी। तो बस एक बार फिर से प्यार से बोलिए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चले राधे राधे बोलते हुए यहाँ पर एंजॉय कीजिएगा एक प्यारा सा कृष्ण भगवान वाला गाना। चलिए करते हैं नटखट सी शुरुआत गाने की, क्योंकि भाई सब नटखट वाली चीजें आ जाती है जब कृष्ण भगवान की बात होती है। आइए सुनते हैं यहाँ पर प्यारा सा गाना। मैं यू गया और यू आया लेकर और भी ढेर सारी कृष्ण जी से जुड़ी बातों को।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
5: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल विधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल विधुड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाए। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
6: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
7: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
8: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, टीएमटी, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी टीपीए के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
9: क्या कर रही है?
10: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
9: फिर से? अभी तो गई थी।
10: हाँ, फिर से जाना है।
9: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
10: गाड़ी नॉट इन बजट।
9: अरे गांधी मोटर्स है ना?
10: गांधी मोटर्स?
9: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
10: तो कब चले?
9: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
11: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
12: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
13: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
14: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
15: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
14: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
15: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
14: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
16: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
17: तो हेलो मेरे प्यारे से लिसनर्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लीजिए भाई सब एक बार फिर से हाजिर है लेकर कृष्ण जन्मोत्सव वाला स्पेशल शो। तो भाई साहब अब हम बात कर लेते हैं नटखट कान्हा और माखन चोरी की। जी हाँ, जब भाई साहब कृष्ण भगवान की बात आती है ना, तो नटखट और माखन चोरी की तो बात आ ही जाती है। मतलब बात कुछ ऐसी है कि अरे भाई, कृष्ण की बात हो और उनकी शरारतों का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और बात कुछ ऐसी है कि कान्हा का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है माखन चोरी। मतलब गोकुल की गलियों में कान्हा और उनके दोस्त पहुंच जाते हैं, किसी के घर से माखन गायब, किसी की मटकी खाली। और शिकायत पहुंची यशोदा मैया के पास, लेकिन कान्हा की मासूम मुस्कान देखकर कौन उन्हें सजा दे पाए। कृष्ण की बात लीलाओं में एक अलग ही मिठास है। सोचिए, एक तरफ वो नटखट बच्चा है जो माखन के लिए शरारत करता है, और दूसरी तरफ वही कृष्ण आगे चलकर दुनिया को गीता का ज्ञान देते हैं। यानी कृष्ण हमें बताते हैं कि जिंदगी में मस्ती भी जरूरी है और जिम्मेदारी भी। और आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में हम शायद मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। मोबाइल है, काम है, पढ़ाई है, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन परिवार के साथ बैठकर हंसने का समय कम होता जा रहा है। तो इस जन्माष्टमी एक छोटा सा काम कीजिए, अपने परिवार के साथ बैठिए, पुरानी याद रखिए, बच्चों के साथ थोड़ा खेलिए और दिल खोल कर मुस्कुराइए, क्योंकि त्योहार सिर्फ पूजा पाठ का नाम नहीं है। त्योहार तो वो मौका है जब परिवार एक साथ बैठता है और रिश्तों में मिठास लौटती है। तो आज कान्हा से एक चीज जरूर मांगिए, हे कान्हा, मेरे जीवन में खुशियों की वो मुस्कान हमेशा बनाए रखना। और अब इस मुस्कान के साथ सुनते हैं एक प्यारी सी कृष्ण भक्ति प्रस्तुति। जी हाँ, वैसे नटखट वाला गाना तो अब आएगा ही, लेकिन उससे पहले नटखट के लिए एक नटखट सी लाइन जरूर बोलिए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चले वैसे एंजॉय कीजिएगा यहाँ पर इस प्यारे से गाने को। यश यू जाएगा, यू आएगा अपने प्यारे से नटखट की बातें लेकर।

0: के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
1: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
2: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
1: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
3: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर, ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
4: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
3: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
4: अभी मैसन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
3: मैसन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
5: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
6: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
5: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
6: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
7: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
9: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल विधोड़ी, पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं, बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं, बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियां हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल।

0: पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिदौड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्ज्वल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
2: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाले 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
3: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
4: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्सी आए।
5: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
6: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
5: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
7: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
8: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
7: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
8: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
7: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
9: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है सीएनजी अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी सीएनजी ही डलता है
10: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
9: बोल लल्लन टॉप। सीएनजी से मिले इतने फायदे, तो आप भी सीएनजी अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
11: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है, पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
12: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
13: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
14: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, एमआरपी की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है एमआरपी को कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM, 24 आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
15: और हेलो मेरे प्यारे से लिसनर्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लीजिए भाई साहब, एक बार फिर से लेकर के आ गया हूँ कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल शो। जी हाँ, और आज हम बातें कर रहे हैं लगातार नटखट से कान्हा की। लेकिन भाई साहब, नटखट से कान्हा की बहुत ढेर सारी बातें हैं, बातें करते करते खत्म ही नहीं होती हैं। मतलब चाहे वो माखन चोरी की बातें हो, या फिर ज्ञान और ताकत की बातें हो, या फिर हो कृष्ण से लेकर के भगवत गीता तक की बातें, मतलब बहुत ढेर सारी बातें हैं। तो आइए जरा भगवत गीता पर भी बातें कर लेते हैं मेरे प्यारे से श्रोताओं। कृष्ण को अगर हम सिर्फ नटखट बाल गोपाल के रूप में देखें, तो शायद हम कृष्ण के व्यक्तित्व का आधा हिस्सा ही समझ पाएंगे, क्योंकि कृष्ण एक महान मार्गदर्शक भी थे। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन के सामने एक बड़ा संकट था। अर्जुन अपने ही लोगों के सामने खड़े थे, उनका मन विचलित था और वो अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म और कर्तव्य का मार्ग समझाया, और यही वो संदेश है जो आज हजारों साल बाद भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे पल आते हैं, यहाँ हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, किस रास्ते पर जाएं, किस पर भरोसा करें। ऐसे समय में कृष्ण की सीख हमें याद दिलाती है, अपना कर्तव्य ईमानदारी से करते रहिए, परिणाम की चिंता में अपना कर्म मत छोड़िए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पूरी मेहनत से पढ़िए, अगर आप नौकरी करते हैं तो पूरी ईमानदारी से काम करिए, अगर आप अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि जिंदगी में सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, सही रास्ते पर चलते रहने का नाम भी सफलता होती है। इस जन्माष्टमी हम कृष्ण से सोना चांदी नहीं मांगेंगे, बस इतना मांगेंगे, हे कान्हा, जब जिंदगी में मुश्किल फैसला लेने का समय आए तो सही रास्ता चुनने की बुद्धि देना। तो बस प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। और भैया, जाते जाते हमारे नटखट के लिए फिर से वो प्यारी सी लाइन है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चले भाई सब एंजॉय कीजिए यहाँ पर नटखट से कृष्ण का ये नटखटी वाला गाना। चले, मैं यू गया और यू आया लेकर और भी ढेर सारी मस्ती और मजाक नहीं, नटखट से कृष्ण की बातें। चले एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
4: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
3: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर भगत सिंह कॉलोनी बिहाइंड सुखम टावर भिवाड़ी।
5: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
6: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
5: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
6: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
7: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
8: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
9: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
10: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
11: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के अधिकारों की रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिदुड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्ज्वल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाए। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
12: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
13: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
14: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
15: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
16: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
15: गुरुग्राम? इतनी दूर?
16: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
15: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
16: मतलब?
15: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
16: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
15: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, A ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर, 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
17: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
18: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
19: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
15: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
16: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक, चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
20: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
16: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
20: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
16: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: और लीजिए भाई साहब, एक बार फिर से हाजिर है आपका दोस्त होस्ट RJ यश, यानी कि आपका खुर्राफती यश। तो भैया, सबसे पहले तो प्यार से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्योंकि भाई साहब, आज है कृष्ण जन्माष्टमी और भैया यश लेकर भी तो आया है कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल शो। तो आइए, अब आपको था जिसका पिछले कई घंटों से इंतजार, आखिर आ ही गई राधा और कृष्ण के प्रेम की बहार। तो चलिए आइए जरा हम राधा और कृष्ण के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, कृष्ण का नाम लिया जाए और राधा का नाम ना लिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। जी हाँ, राधा कृष्ण, ये दो नाम भारतीय संस्कृति में प्रेम, भक्ति और समर्पण की खूबसूरत भावना से जुड़े हुए हैं। राधा कृष्ण की कथा हमें बताती है कि सच्चे प्रेम में सिर्फ पाने की इच्छा नहीं होती, उसमें विश्वास होता है, सम्मान होता है, समर्पण होता है। और यही बात आज के रिश्तों के लिए भी कितनी जरूरी है। आज छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं, गलत फहमियां बढ़ जाती हैं, बातचीत बंद हो जाती है। लेकिन अगर हम कृष्ण की तरह धैर्य रखें, राधा की तरह समर्पण समझें, तो शायद बहुत से रिश्ते बचाए जा सकते हैं। तो इस जन्माष्टमी एक खूबसूरत संकल्प लेते हैं, जिससे प्यार करते हैं उसका सम्मान करेंगे, माता पिता को समय देंगे, दोस्तों की बात सुनेंगे और किसी से नाराजगी है तो बातचीत से उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कृष्ण का संदेश सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, कृष्ण हमारे व्यवहार में भी दिखाई देने चाहिए। तो आज अपने दिल से कहिए, मेरे जीवन में प्रेम रहे, मेरे रिश्तों में विश्वास रहे और मेरे मन में हमेशा कृष्ण का नाम रहे। तो बस प्यार से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो भैया, प्यार करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। और फिलहाल तो यहाँ पर फिर से मेरे नटखट से कान्हा के लिए नटखट सी लाइनें, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चलिए यहाँ पर एंजॉय कीजिएगा एक प्यारा सा नटखट वाला गाना। मैं यू गया और यू आया लेकर और भी ढेर सारी बातें।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: राधा, ओ राधा, देख तेरा कान तुझे पुकार रहा है।
2: राधा, ओ राधा।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
1: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
1: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
3: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
4: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
3: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
4: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
5: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
6: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी, पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं, बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं, बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं, बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाए। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
7: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूँ। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूँ। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूँ। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाए। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
8: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूँ। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूँ और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
9: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। देश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
10: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
11: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
10: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9983040100 पर।
12: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
13: बोलिए मुझे जीजा जी।
14: क्या जी? क्या आपने लगाई PNG?
13: हाँ जी।
14: क्यों जी?
13: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
14: और सेफ्टी
13: की चिंता स्टॉप,
14: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
13: मतलब
14: एक्स्ट्रा खर्चा
13: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
14: हाँ जी
13: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
14: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
13: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
14: बिल्कुल सही।
13: तो आप भी अपनाओ PNG
14: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
15: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
16: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
15: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
16: अरे नहीं, एके ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, एएमसी, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
15: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी एके ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
17: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
18: अरे इसमें क्या है?
17: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
18: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो? लेकिन आप दिल्ली कब गए?
17: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
18: इनका एड्रेस क्या है?
17: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
19: और लीजिए भाई साहब एक बार फिर से हाजिर है आपका दोस्त होस्ट आरजे यश, यानी कि आपका खुराफाती यश। और भाई साहब आपको तो पता है कि आज लगातार मैं बातें कर रहा हूँ कृष्ण भगवान की। पता है क्यों? क्योंकि भाई साहब आज कृष्ण जन्माष्टमी है। और भाई साहब नटखट से कान्हा की बातें ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो चलिए सबसे पहले तो प्यार से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों अब बातें सीधी आपसे, तो मेरे प्यारे से लिसनर्स अब जरा आपसे बात करते हैं। आप जहाँ भी हैं, घर में हैं, दुकान पर हैं, यात्रा कर रहे हैं या रात के इस खूबसूरत माहौल में परिवार के साथ हैं, एक बार अपने आसपास नजर डालिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा आज कान्हा जरूर बना होगा। कहीं नन्हे से मुकुट में बाल गोपाल मुस्कुरा रहे होंगे, तो कहीं घर में झूला सजाया जा रहा होगा, कहीं माखन मिश्री का भोग तैयार हो रहा होगा, तो कहीं मंदिर से आती घंटियों की आवाज पूरे माहौल को भक्ति बना रही होंगी। यही तो हमारे त्योहारों की खूबसूरती है, ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। आज जन्माष्टमी है तो अपने घर के बच्चों को कृष्ण की कहानी जरूर सुनाइए। उन्हें बताइए कृष्ण सिर्फ एक भगवान का नाम नहीं, बल्कि प्रेम, साहस, बुद्धि और कर्म की प्रेरणा का भी है। और हाँ, आज अगर आपके घर में प्रसाद बना है तो पड़ोसी के साथ भी जरूर बांटिए। किसी बुजुर्ग को फोन करके उनका आशीर्वाद लीजिए, किसी पुराने दोस्त को जन्माष्टमी की शुभकामना दीजिए, और अगर किसी से मन मुटाव है तो आज उसे खत्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि त्योहार तब और भी खूबसूरत बनता है जब हमारी खुशी किसी और की खुशी बन जाए। तो मेरे प्यारे से श्रोताओं, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। जिंदगी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिथोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिथोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
6: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
7: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
8: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लास क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
7: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
9: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
10: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
11: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
10: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
11: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
12: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
13: और लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपका दोस्त होस्ट RJ यश, यानी कि आपका खुर्रा फती यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि आज मैं लगातार बातें कर रहा था कृष्ण जन्माष्टमी पर। जी हाँ, क्योंकि आज शो भी था कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल। लेकिन दोस्तों, अब वक्त हो चला है कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल शो को फिदा लेने का। लेकिन जाने से पहले आज की पूरी कहानी से एक बात अपने दिल में जरूर लेकर जाइए। कृष्ण हमें सिखाते हैं, मुश्किल आए तो घबराना नहीं है, गलत रास्ता आसान भी लगे तो भी उसे नहीं चुनना है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है और जिंदगी में खुशियाँ मिले तो उन्हें दूसरों के साथ बांटना है। कान्हा की मुस्कान आपके घर में खुशियाँ लेकर आए, उनकी बांसुरी आपके जीवन में प्रेम की धुन बजाए, उनकी सीख आपको हर मुश्किल वक्त में सही रास्ता दिखाए और आपके परिवार में हमेशा सुख, शांति और अपनापन बना रहे। आज रात जब जन्माष्टमी का उत्सव अपने चरम पर होगा, जब मंदिरों में घंटियां बजेंगी, जब जय कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय कारे गूंजेंगे, तो आप भी दिल से बोलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, और आखिर में राधे राधे जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं था आपका दोस्त RJ यश, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नई आवाज और नई ऊर्जा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और कान्हा का नाम लेते रहिए। राधे राधे जय श्री कृष्ण। टाटा बाय बाय, टेक केयर भवाड़ी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कृष्ण जन्माष्टमी एंजॉय करते रहो, मनाते रहो। और बस सबसे आखिर में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बाय बाय भिवाड़ी।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
5: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिथोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के अधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिथोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाए। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
6: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाए। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
7: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
8: क्या कर रही है?
9: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
8: फिर से? अभी तो गई थी।
9: हाँ, फिर से जाना है।
8: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
9: गाड़ी नॉट इन बजट।
8: अरे गांधी मोटर्स है ना।
9: गांधी मोटर्स?
8: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
9: तो कब चलें?
8: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
10: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000014 पर।
11: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
12: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
13: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
14: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
13: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
14: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
13: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
15: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के अधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाए। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्सी आए। विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
6: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
5: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
7: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
8: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
7: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
8: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
7: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
9: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
10: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
9: CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
11: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
12: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
11: एकता मोटर्स अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
13: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
1: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
0: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
4: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल विधोड़ी, पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं, बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं, बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के अधिकारों की रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल विधुड़ी का चुनाव नहीं, बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
5: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
6: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका, जय हिंद, जय भिवाड़ी।
0: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
7: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
0: गुरुग्राम? इतनी दूर?
7: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
0: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
7: मतलब?
0: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
7: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
0: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 Bites डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर, 9871122135। 32 Bites डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
8: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
9: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
10: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
0: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
7: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0% डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
11: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
12: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
11: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी तो बहुत महंगी होगी ना?
12: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ

0: की सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
1: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, टीएमटी, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट। नो है 8607274999।
2: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
3: विजय फॉर्चून कार्स भिवाड़ी।
4: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
5: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
6: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
7: बोलिए मुझे जीजा जी।
8: क्या जी? क्या आपने लगाई PNG?
7: हाँ जी।
8: क्यों जी?
7: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
8: और सेफ्टी की चिंता स्टॉप,
7: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
8: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
7: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
8: हाँ जी
7: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
8: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
7: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
8: बिल्कुल सही।
7: तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
9: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
10: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
9: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
10: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
9: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी एके ऑटो मोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
11: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
12: अरे इसमें क्या है?
11: वही जो तुम्हें

0: बहुत टाइम से चाहिए था।
1: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो? लेकिन आप दिल्ली कब गए?
0: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
1: इनका एड्रेस क्या है?
0: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
3: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
4: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
1: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, AC क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
4: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
5: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जाँच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
6: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
7: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
6: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
7: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
8: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: भूषण लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरि राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
4: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी, पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं, बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं, बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं, बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
5: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
6: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
7: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है? अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
8: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
7: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
8: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
9: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
10: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
9: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
11: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी, आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: मेरे प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
5: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाले 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
6: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
7: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है। कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
8: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
9: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों, बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टेक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल विधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के अधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल विधुड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाए। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाले 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, टीएमटी, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी टीपीए के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट रूट कैनाल स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
7: भिवाड़ी वासियों अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
6: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
7: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
6: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
8: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
9: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
8: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
9: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल विधोड़ी, पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं, बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं, बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल विधोड़ी का चुनाव नहीं, बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
6: यहाँ उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
5: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
7: अरे कहाँ जा रही हो?
8: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
7: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
8: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए DIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
9: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
10: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
11: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
12: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
11: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
13: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
14: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS CBRI

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटी।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: 90.8 FM 24 पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड कैफे आरजे सनी के साथ। दोस्तों, रोजाना की तरह आज भी अपने तय वक्त पर हाजिर हो चुके हैं आपको रूबरू करवाने एक और ऐसे कलाकार से जिसे दुनिया करती है सलाम, और आज पूरी दुनिया उनकी फैन है, या यूं कह ले उनकी आवाज की फैन है। दोस्तों, जितने इमोशनल इनकी सक्सेस स्टोरी है उससे कहीं ज्यादा इमोशनल इंसान है ये। एक ऐसा लड़का जब वो गाना शुरू करता है तो उनके संगीत के गुरुओं का कहना है कि भगवान को खड़ा कर देता है, गाने को रूह तक उतार देता है। वैसे दोस्तों, कुछ समय पहले तक लड़का कहना सही था, लेकिन आज 33

20 साल के हो चुके हैं अरिजीत सिंह। दोस्तों, बॉलीवुड कैफे के आज की हमारे शो में हम बात करने वाले हैं सबके चहेते मोस्ट पॉपुलर वर्सेटाइल प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह के बारे में। इससे पहले कि दोस्तों हम अपने इस सफर को आगे बढ़ाएं, हम आपको सुनवा देते हैं अरिजीत सिंह का गाया हुआ पहला गाना यानी कि डेब्यू सॉन्ग, जो उन्होंने गाया था हाई स्कूल म्यूजिकल एल्बम 2 के लिए। और इस गाने के लिए अरिजीत को ब्रेक दिया था शंकर एहसान ने। दोस्तों इस गाने को सुनिएगा, वापस लौटते हैं कुछ ही देर में। सुनते रहिएगा 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
2: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
1: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
3: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम, NABH द्वारा प्रमाणित।
4: यहाँ उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
3: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
5: अरे कहाँ जा रही हो?
6: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
5: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
6: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
5: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता, जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
7: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
8: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
9: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
8: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
10: दूसरी ब्रांच A50, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
11: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
12: एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है आपका 90.8 FM 24 पर। शो चल रहा है बॉलीवुड कैफे आरजे सनी के साथ। दोस्तों अरिजीत सिंह, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वो गाते हैं तो इतना दिल से गाते हैं कि उनका गाया हुआ हर गाना हर किसी के दिल तक उतरता है, हर किसी की रूह को छू लेता है। लेकिन हम में से शायद बहुत कम लोग उनके स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड के बारे में जानते हों। और दोस्तों ये कहते हुए बहुत हैरानी होती है, लेकिन जितना हैरान मैं हूँ उससे कहीं ज्यादा हैरान थे उस वक्त के गुरु जो अरिजीत सिंह से पहली बार मिले। दोस्तों अरिजीत सिंह की बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात करें तो उनके परिवार में संगीत का माहौल था। उनकी नानी और उनकी माँ संगीत के बारे में बहुत कुछ जानती थी। वैसे दोस्तों बात करेंगे अरिजीत सिंह के परिवार के बारे में भी और इनके घर के संगीतमय माहौल के बारे में भी, लेकिन अभी हम आपको बताना चाहते हैं साल 2005 में जब सोनी टीवी पर एक सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल का आयोजन शुरू हो रहा था। 18 साल का ये लड़का जब इस शो में ऑडिशन देने गया तो वहाँ के गुरु भी हैरान रह गए। इतना कुछ संगीत के बारे में जानते हुए फिर क्यों कभी कभी अरिजीत नर्वस हो जाते हैं और क्यों उनकी परफॉर्मेंस डगमगा जाती है, जनता क्यों उन्हें इतने वोट नहीं करती कि वो इस शो को जीत पाएं। हालांकि इस शो के टॉप 6 तक पहुंचे, जजेस का मानना था कि जब अरिजीत गाते हैं तो भगवान को खड़ा कर देते हैं, लेकिन फिर भी जजेस नाराज थे अरिजीत से। उस समय जजेस का क्या कहना था, क्या सोचते थे वो अरिजीत के बारे में, सुनवाते हैं आपको उस समय की ऑडियो क्लिप के जरिए।
13: बहुत फोकस के साथ आया था वो कि उससे फेम चाहिए, कहीं पे और एक पक्का बॉन्ड बन गया उसके साथ, एक नाता सा बन गया, जैसे कि वो छोटा बच्चा है, उसकी सारी जिम्मेदारी हम पर है।
14: इतना जानकार लड़का, पर कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से आज वो खतरे में?
15: अच्छा गा के भी कुछ नहीं हो रहा है।
13: मुझे पता है कि वो बहुत कोशिश करता है, पर कहीं पर जो है वो खो जाता है स्टेज पे जाके। उसमें भगवान की देन जो है इतना दिखाई देती है, जब वो गाता है तो बिल्कुल भगवान खत्म।

0: दुर्भाग्यपूर्ण काम आज किया है कि मैं इतनी नाराज हूँ अरिजीत से।
1: तो बहुत होगा यहाँ से जा रहा हूँ, बट पहली बार मैंने माइक पकड़ा था।
2: आगे चल के बहुत कुछ है, करेंगे हम लोग कुछ साथ में।
0: अरिजीत मेरा फेवरेट सिंगर था, अगर मैं उस दिन भी नाराज हुई थी तो इसलिए नाराज हुई थी।
3: दोस्तों अरिजीत इस शो के विनर तो नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने जजेस के दिल जीत लिए थे। दोस्तों इससे पहले कि अपने इस सफर में हम और आगे बढ़े, आपको सुनवा देते हैं बर्फी मूवी का एक बहुत ही बेहतरीन सुंदर सा गाना अरिजीत सिंह की आवाज में, फिर ले आया दिल। सुनिए इस बेहतरीन से गाने को, वापस आपसे मुलाकात होगी यहीं 90.8 FM 24 पर, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
5: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
4: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
6: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
7: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
6: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
7: अभी मेस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
6: मेस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
8: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
10: मेरे प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के अधिकारों की रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
11: क्या कर रही है?
12: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
11: फिर से? अभी तो गई थी।
12: हाँ, फिर से जाना है।
11: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
12: गाड़ी नॉट इन बजट।
11: अरे गांधी मोटर्स है ना?
12: गांधी मोटर्स?
11: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
12: तो कब चलें?
11: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
13: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अल्बर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
14: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
15: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
16: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
17: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीज, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
16: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
17: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
6: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने, बीडीआई सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
15: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
18: वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है आपका 90.8 FM 24 पर और शो चल रहा है बॉलीवुड कैफे आरजे सनी के साथ। दोस्तों, अब तक के हमारे इस सफर में हमने आपको बताया कि किस तरह से अरिजीत सिंह सोनी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल तक पहुंचे और वो साल था 2005 जब वो महज 18 साल के थे और उस दौरान दोस्तों क्या कुछ हुआ इसकी भी किस्से कहानियां हमने आपको बताई। लेकिन अब बात करते हैं इस शो में किस तरह से पहुंचे थे अरिजीत सिंह। दोस्तों, अरिजीत सिंह के गुरु थे राजेंद्र प्रसाद हजारी और उनका मानना था कि क्लासिकल म्यूजिक अब लोग पुराना मानने लग गए हैं, इसलिए आगे बढ़ने के लिए कुछ नया सीखना होगा और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अरिजीत को प्रेरित किया कि वो इस शो में भाग ले। हालांकि इस शो में भाग लेने के लिए अरिजीत का बिल्कुल भी मन नहीं था और उसका कारण आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। अरिजीत को क्लासिकल म्यूजिक पसंद था लेकिन जब उनको पता चला कि इस शो में जूरी जज के रूप में शंकर महादेवन को बुलाया जा रहा है तब अरिजीत ने इस शो में पार्टिसिपेट करने का फैसला ले लिया, क्योंकि दोस्तों शंकर भी क्लासिकल म्यूजिक बैकग्राउंड से हैं। और दोस्तों, इस शो की फ्लैशबैक हिस्ट्री तो हम आपको बता ही चुके हैं। इस शो में अरिजीत पहुंचते हैं, सेलेक्ट होते हैं, टॉप 6 तक पहुंचते हैं, जजेस की नाराजगी भी उन्हें मिलती है और जजेस का प्यार भी उन्हें मिलता है और फिर जनता के कम वोट की वजह से वो इस शो से बाहर हो जाते हैं। अरिजीत को इस समय तक तो बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे लेकिन टीवी में आने की वजह से अरिजीत की फैन फॉलोइंग तो बन ही गई थी। वेल दोस्तों, ये तो रहा अरिजीत सिंह की म्यूजिक इंडस्ट्री में पहुंचने तक के सफर में सिर्फ एक पायदान क्रॉस करने की कहानी। बात करेंगे इनके परिवार के बारे में भी और आगे के सफर के बारे में भी, किस तरह से म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री होती है अरिजीत सिंह की और कैसे बन जाते हैं इंडिया के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी चहेते सिंगर। अभी फिलहाल आपको सुनवाते हैं आशिकी 2 मूवी का एक बेहतरीन गाना, जिस गाने से अरिजीत सिंह ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। सुनते रहिएगा 90.8 FM 24 आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
4: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
4: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं, निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
5: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
4: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उजला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
6: बोल लालंकार। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां, मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
10: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
2: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
12: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
13: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
12: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
14: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
15: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
14: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
15: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
16: 90.8 FM 24 पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड कैफे RJ सनी के साथ। दोस्तों, इससे पहले कि अरिजीत सिंह के सिंगिंग करियर में हम और आगे बढ़े, अरिजीत सिंह के परिवार से मिल लेते हैं और झांक लेते हैं उनके बचपन में। दोस्तों, अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 में पश्चिम बंगाल में हुआ था, जियागंज मुर्शिदाबाद में। अरिजीत के पिता पंजाबी थे और उनकी माता बंगाली थी, और अरिजीत के पिता LIC में काम करते थे। माता एक सामान्य गृहिणी थी। अरिजीत ने अपने स्कूल की पढ़ाई जियागंज राजा बिजोई सिंह हाई स्कूल से की, और स्कूल की पढ़ाई को पूरा करने के बाद अरिजीत ने जियागंज के ही श्रीपत सिंह कॉलेज में दाखिला ले लिया। अरिजीत के अनुसार वो पढ़ाई में एक अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन फिर भी उनका झुकाव गायकी की ओर था। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अरिजीत के घर में सिंगिंग का माहौल था, और इस माहौल में अरिजीत को बचपन से ही गाने का शौक होना लाजमी है। और दोस्तों, सोने पे सुहागा वाली बात ये कि अरिजीत की माँ एक अच्छी सिंगर होने के साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी तबला वादक भी थी। अरिजीत की माँ बहुत ही अच्छा तबला बजा लेती थी, और साथ ही इनकी नानी एक बहुत ही अच्छी गायक थी। इनकी मौसी ने भी भारतीय क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेनिंग ले रखी थी, और इनके मामा भी एक बहुत अच्छे तबला वादक थे। ऐसे में अरिजीत भी गायकी से जुड़े रहे, और उनके गायन की पहली शिक्षा उनके घर में ही शुरू हुई। अब परिवार वालों ने अरिजीत के अंदर गायन की ललक को देखते हुए फैसला कर लिया कि अरिजीत को गायन में ही प्रोफेशनली ट्रेनिंग दिलवाई जाए। ऐसे में कहां होती है अरिजीत सिंह की ट्रेनिंग और कहां से सीखते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक, बताएंगे आपको कुछ ही देर में। सुनते रहिएगा 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
0: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
2: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी। भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव, MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
3: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
2: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
3: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
2: मैस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
4: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
5: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
4: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
5: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
6: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
8: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिथोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं, बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं, बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिदुड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्ज्वल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाए। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
2: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
9: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
2: गुरुग्राम? इतनी दूर?
9: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
2: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
9: मतलब?
2: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
9: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
2: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
10: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
11: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
12: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
13: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
9: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000।

0: पावर एसी, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड एलईडी टीवी, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
1: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
0: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.macs.in पर।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
3: 90.8 FM 24 पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड कैफे आरजे सनी के साथ। दोस्तों, परिवार वालों ने सिंगिंग के प्रति अरिजीत की ललक को देखते हुए जब ये फैसला किया कि अरिजीत को भारतीय क्लासिकल म्यूजिक की ही शिक्षा देनी है, तब उन्होंने एक अच्छे गुरु की तलाश शुरू की। और दोस्तों, ये तलाश खत्म हुई राजेंद्र प्रसाद हजारी के पास पहुंचकर। अरिजीत ने भारतीय क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा राजेंद्र प्रसाद हजारी से ली और साथ ही तबला वादन की शिक्षा इनको धीरेंद्र प्रसाद हजारी ने दी। अरिजीत ने पॉप म्यूजिक को बीरेंद्र प्रसाद हजारी से सीखा और सिंगिंग की शिक्षा लेने के बाद डट गए मैदान में अरिजीत सिंह। दोस्तों, सोनी टीवी के फेम गुरुकुल के बाद अरिजीत ने सोनी के ही दूसरे रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया और विनर होने के साथ ही जनता में उनकी पहचान बढ़ने लगी। और इस जीत के बाद अरिजीत ने म्यूजिक प्रोग्रामिंग में अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। अरिजीत ने अपना खुद का रिकॉर्डिंग सेटअप लगाया और इसके बाद अरिजीत ने शंकर एहसान लोए, विशाल शेखर और मिथुन के साथ असिस्टेंट म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर काम किया। दोस्तों, इस दौरान शंकर महादेवन ने अरिजीत को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया और वे अक्सर निर्माताओं को अरिजीत से गाना गवाने के लिए बोलते रहते थे। वो निर्माताओं को कहते थे कि अरिजीत आने वाले कल की आवाज हैं। लेकिन दोस्तों, निर्माता शंकर की बात नहीं सुनते थे और उन्हें लगता था कि किसी नई आवाज को मौका देना बहुत बड़ा जोखिम है। ऐसे में अरिजीत को पहला ब्रेक शंकर एहसान लोए ने ही दिया। हाई स्कूल म्यूजिकल एल्बम 2, जिसका गाना आप शो की शुरुआत में सुन चुके हैं, यही वो पहला गाना था जिससे अरिजीत का म्यूजिक इंडस्ट्री में सफर स्टार्ट हुआ। और दोस्तों, इसके बाद अरिजीत ने साल 2010 में प्रीतम चक्रवर्ती के साथ काम करना शुरू कर दिया। साल 2011 वो साल था जब अरिजीत का पहला बॉलीवुड डेब्यू सॉन्ग रिलीज हुआ, जिस सॉन्ग को मिथुन ने कम्पोज किया था और ये फिल्म थी मर्डर 2, जिसका गाना फिर मोहब्बत करने चला। ये गाना आपने सुना होगा। इस गाने के साथ आपको छोड़े जाते हैं, वापस लौटेंगे 90.8 FM 24 पर। और अभी तो अरिजीत की सफलता की बस शुरुआत है। आगे जानेंगे कौन कौन से अवार्ड उनकी झोली में आए और कौन कौन से खिताब उन्हें मिले। लेकिन इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा 90.8 FM 24 के साथ। आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
2: विजय फॉर्चून कार्स भिवाड़ी।
3: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
4: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
6: बोलिए मुझे जीजा जी।
7: क्या जी?
6: क्या आपने लगाई PNG?
7: हाँ जी।
6: क्यों जी?
7: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
6: और सेफ्टी
7: की चिंता स्टॉप,
6: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
7: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
6: भी स्टॉप।
7: जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
6: हाँ जी,
7: हाँ जी, हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी PNG।
8: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
7: बिल्कुल सही।
8: तो आप भी अपनाओ PNG
7: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
9: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
10: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
9: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
10: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
9: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
11: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
12: अरे इसमें क्या है?
11: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
12: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
11: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
12: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
11: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
12: इनका एड्रेस क्या है?
11: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
13: 90.8 FM 24 पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। RJ सनी के साथ इस समय आप लोग सुन रहे हैं बॉलीवुड कैफे शो को। दोस्तों साल 2011 के मर्डर 2 गाने से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले अरिजीत, शायद उनका डेब्यू कुछ साल पहले ही हो जाता, लेकिन यहाँ पर भाग्य ने थोड़ा सा फेर कर दिया। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस गाने की रिकॉर्डिंग साल 2009 में हुई थी, लेकिन ये गाना आते आते साल 2011 में आया। दोस्तों इस गाने ने म्यूजिक इंडस्ट्री के तमाम कंपोजर और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा, और साल 2012 में अरिजीत ने प्रीतम के कंपोजिशन में फिल्म एजेंट विनोद का एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना राबदा। दोस्तों इस गाने की सफलता को देखते हुए प्रीतम ने इसे अरिजीत से चार अलग अलग वर्जन में गाना गवा डाला और इसी साल प्रीतम के साथ अरिजीत ने प्लेयर्स, कॉकटेल और बर्फी में भी काम किया। अरिजीत ने साल 2012 में विशाल शेखर की फिल्म शंघाई में दुआ गाना गाया। दोस्तों ये गाना बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया और क्योंकि ये गाना बहुत ही ज्यादा इमोशनल था इसलिए ये लोगों के दिलों तक पहुंच सका और फिर नतीजन अरिजीत को इस गाने के लिए अवार्ड भी मिला। दोस्तों उनकी सफलता में इस गाने की भी बहुत बड़ी भूमिका है। चलिए दोस्तों फिलहाल अभी हम आपके लिए इस गाने को प्ले कर रहे हैं, अब आप ही तय कीजिएगा ये गाना कितना अच्छा है और आपके दिल तक उतरता है या नहीं। वापस आपसे मुलाकात होगी, सुनते रहिएगा 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
5: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
4: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
6: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों? अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
7: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
6: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
7: अभी मेस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
6: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
8: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
10: मेरे प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के अधिकारों की रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
11: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT। मजबूत निर्माण सदा के लिए।
12: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
13: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
12: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
14: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
15: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
16: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
15: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
16: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
17: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916। 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
18: 90.8 FM 24 पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड कैफे RJ सनी के साथ। दोस्तों यूं तो अरिजीत को म्यूजिक इंडस्ट्री में पहचान मिल चुकी थी, लेकिन असली पहचान अभी बाकी थी और असली मुकाम अभी बनना बाकी था। दोस्तों दुआ गाने की सफलता के बाद साल 2013 में अरिजीत के करियर का सबसे सफल साल कहा जाता है ये साल। दोस्तों इस साल अरिजीत ने मिथुन के कंपोजिशन में म्यूजिकल फिल्म आशिकी 2 के लिए तुम ही हो इस गाने को गाया और ये गाना इतना ज्यादा सफल रहा और दोस्तों ये गाना उनके करियर का सबसे हिट गाना रहा। इस रोमांटिक गाने को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया और दोस्तों इस एक गाने ने अरिजीत को तमाम सारे अवार्ड दिलाए और यहीं से वो एक प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर की भूमिका में आ जाते हैं। दोस्तों इस फिल्म में म्यूजिक दिया था जीत गांगुली ने, जिसके साथ मिलकर अरिजीत ने फिल्म के बाकी गाने भी गाए। जीत को इस फिल्म के लिए फ्रेश आवाज चाहिए थी। सॉन्ग मेकर्स ने अरिजीत का गाना दुआ यूट्यूब में सुना और जिसके बाद उन्होंने अरिजीत को आशिकी 2 के लिए मना लिया और जिसके बाद बन गया ये उस साल का सबसे हिट गाना। वैसे दोस्तों इसी साल 2013 में करण जौहर की फिल्म ये जवानी है दीवानी में प्रीतम के साथ भी अरिजीत ने काम किया। फिल्म के लगभग सभी गाने अरिजीत ने गाए। इस फिल्म का एक गाना जो बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया वो गाना मैं आपको सुनवा रहा हूँ। ये गाना है कबीरा फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी। इस गाने को सुनिएगा, वापस कुछ ही देर में लौटेंगे। सुनते रहिएगा 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
2: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
1: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
3: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
4: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
3: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
4: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
3: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
1: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
2: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
1: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
6: वेल दोस्तों, समय हो चुका है आपसे इजाजत लेने का और शो के वाइंड अप करने का, लेकिन चलते चलते हम आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, अरिजीत सिंह जो इतने शर्मीले दिखते हैं, जिनको स्टेज पर जाने पर भी पहले डर लगता था और लोगों के सामने उन्हें फेस करने में प्रॉब्लम होती थी, आपको बता दे कि अरिजीत ने अपनी बचपन की दोस्त कोयल राय से साल 2014 में बंगाली तरीके से शादी की थी। और कहा जाता है कि अरिजीत की ये दूसरी शादी है। और दोस्तों, पहली शादी उन्होंने की थी रियलिटी शो में किसी एक प्रतिभागी के साथ, और उनसे उन्हें एक बेटी भी है। खैर दोस्तों, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है। दोस्तों, अरिजीत के अवार्ड्स की बात करें तो दोस्तों, अरिजीत ने आशिकी 2 मूवी के तुम ही हो इस गाने के लिए 23 अवार्ड जीते। और दोस्तों, बड़े ही गर्व की बात है, साल 2014 में नेशनल इंडियन स्टूडेंट यूनियन UK ने अरिजीत को यूथ आइकन म्यूजिक वर्ल्ड 2014 का खिताब दिया था। अरिजीत के बारे में एक कॉन्ट्रोवर्सी भी है। साल 2013 में अरिजीत सिंह एक इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार पर भड़क गए थे, और उसकी वजह थी पत्रकार ने कुछ ऐसे पर्सनल सवाल किए थे जिसका जवाब शायद वो नहीं देना चाहते थे या नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। वेल दोस्तों, समय की कमी होने की वजह से अभी हमें चलना पड़ेगा और लेनी पड़ेगी आपसे इजाजत, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं एक बहुत ही अच्छे गाने के साथ। इस गाने को सुनिएगा और वापस आपसे मुलाकात होगी बॉलीवुड कैफे के शो

0: कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
3: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
2: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर भगत सिंह कॉलोनी बिहाइंड सुखम टावर भिवाड़ी।
4: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
6: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं, बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं, बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं, बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाए। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
7: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को संवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
8: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी। 9887066308।
0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
9: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा।
10: और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं।
9: और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत।
10: पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़
9: और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
0: चौबीस घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
9: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा।
10: और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं।
9: और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत।
10: पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़
9: और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी, आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान कर

0: पसंद की सर्विस बुक करें।
1: मेस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूं। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूं। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूं। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियां हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों की आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
6: यहाँ उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
5: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
7: अरे कहाँ जा रही हो?
8: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
7: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
8: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
7: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
9: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
11: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
12: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा, गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के अधिकारों की रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में दास्तान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
5: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाले 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाए। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
6: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
7: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, टीएमटी, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी टीपीए के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
8: क्या कर रही है?
9: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
8: फिर से? अभी तो गई थी।
9: हाँ, फिर से जाना है।
8: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
9: गाड़ी नॉट इन बजट।
8: अरे गांधी मोटर्स है ना?
9: गांधी मोटर्स?
8: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
9: तो कब चले?
8: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
10: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
11: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
12: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
13: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
14: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
13: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
14: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
13: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
15: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
4: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल विधोड़ी, पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं, बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं, बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के अधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल विधुड़ी का चुनाव नहीं, बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
5: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
6: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
7: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है। कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए। विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
8: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
7: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
9: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
10: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
9: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
10: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
9: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उजला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
11: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
12: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
11: CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
13: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
14: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
15: एकता मोटर्स अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
16: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के अधिकारों की रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
6: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
5: गुरुग्राम? इतनी दूर?
6: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
5: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
6: मतलब?
5: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
6: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
5: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल डेंटल क्लिनिक ए ब्लॉक A140 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
7: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
8: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
9: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
5: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
6: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
10: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
11: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
10: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
11: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी, आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: मेरे प्यारे भाइयों बहनों
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
5: हाय हेलो नमस्ते, मैं हूँ आपके साथ आरजे भावना और स्वागत आप सभी का 90.8 FM 24 पर, और लेकर हाजिर हो चुके हूँ आपका पसंदीदा शो प्रज्ञान। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं भी प्रचलित है, पर इनमें से एक ऐसी गाथा भी है जिसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना के नायक को राजस्थान में आज भी प्रेमी नायक के रूप में याद किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को उनकी उपाधि दी जाती है। यही नहीं, आज के लोक गीतों में भी स्त्रियां अपने प्रियतम को उनके नाम से संबोधित करती है। उस नायक का नाम तो पति शब्द का पर्यायवाची ही बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न प्रकार के मौकों पर उनके गीत को बढ़ा चढ़ाकर गाती है। कौन है वो नायक, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल शो की शुरुआत करते एक बेहतरीन से म्यूजिकल ब्रेक के साथ, तब तक आप सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
3: अरे कहाँ जा रही हो?
4: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
3: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
4: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
3: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर टावड़ू हरियाणा। संपर्क करें 9952336111 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा Level 1 and 2, फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल मार्केट के पास भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
8: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
9: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
10: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
11: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या किया।
10: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
12: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो प्रज्ञा। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान की एक फेमस लोक कथा के बारे में जो है ढोला मारू की कहानी। ढोला नरवर के राजा नल के पुत्र थे जिन्हें इतिहास में ढोला व साहूलकार के नाम से भी जाना जाता है। ढोला का विवाह बालेपने में जांगुल देश बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पवार राजा पिंगल की पुत्री मरवणी के साथ हुआ। उस वक्त ढोला 3 वर्ष के थे और मरवणी मात्र 1.5 वर्ष की थी, इसलिए शादी के बाद मरवणी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी हो गई मालवणी के साथ। बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला तो लगभग भूल ही चुका था। उधर जब मारवणी प्रौढ़ हुई तो माता पिता ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भिजवाए। ढोला की दूसरी रानी मालवणी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया। उसे यह पता था कि मारवणी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई हो ही नहीं सकती, तो उसने अपनी ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजे गए संदेश को ढोला तक नहीं पहुँचने दिया और जो भी संदेश वाहक संदेश लेकर जाता था मरवणी उसको मरवा देती थी। और उधर मरवणी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, तब तक आप सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों, अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार दान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहेबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैस एंड केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
1: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं, अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मैस एंड केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
1: मैस एंड केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
3: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
4: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
3: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
4: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
5: क्या कर रही है?
6: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
5: फिर से? अभी तो गई थी।
6: हाँ, फिर से जाना है।
5: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
6: गाड़ी नॉट इन बजट।
5: अरे गांधी मोटर्स है ना?
6: गांधी मोटर्स?
5: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
6: तो कब चले?
5: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
7: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
8: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
9: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
1: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स, भिवाड़ी।
10: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस, Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
1: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
10: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स,
1: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
2: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
11: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर, और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो प्रज्ञान। तो हम बात कर रहे थे मारवाणी को जिस दिन से स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए थे, उस दिन के बाद तो समझो वह उसके वियोग में जलती रहती थी। उसको न खाने में रुचि रही न किसी कार्य में। उसकी हालत देख कर उसकी माँ ने राजा पिंगल से कहा कि ढोला को फिर संदेश भेजा जाए। इस बार राजा पिंगल ने सोचा संदेश वाहकों को तो मालवणी मरवा डालती है, इसलिए इस बार क्यों ना किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचाए और उसे मरवणी के साथ शादी की याद दिलाए। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था तब ढोली को मारवाणी ने अपने पास बुलाया। मारवाणी ने आखिर ढोली को अपने पास क्यों बुलाया, आगे की कहानी आपको बताएंगे थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल वक्त एक बेहतरीन से म्यूजिकल ब्रेक का, ओनली ऑन रेडियो 90.8 FM 24 पर, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01-4934-93222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
4: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
4: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं, निःशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
5: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
4: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है, CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
6: CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
8: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
10: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
2: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
9: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो प्रज्ञान। तो हम बात कर रहे थे ढोली नरवर के लिए रवाना होता है तो मारवाणी उसको अपने पास बुलाती है और उसको अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर देती है और समझाती है कि ढोली कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाना गाकर सुनाए। ढोली ने मारवाणी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना गाना शुरू कर दिया। उस रात बादल छा रहे थे, अंधेरी रात में बिजली चमक रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में गाना गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन उठाए नाग की भांति राग पर झूमने लगा। ढोली ने गीत में पिंगल व मारवाणी का जिक्र किया। गीत में पिंगल व मारवाणी का नाम सुनते ही ढोला चौंक गया और उसको अपने बालेपने की शादी की याद ताजा हो गई। ढोली ने तो मल्हार व मारू राग में मारवाणी के रूप का वर्णन ऐसा किया कि जैसे पुस्तक खोलकर उसके सामने रख दी। उसे सुनकर ढोला तड़फ उठा। ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा तो उसने पिंगल से लाए मारवाणी का पूरा संदेश सुनाते हुए कहा कैसे मारवाणी उनके वियोग में तड़फ रही है। ढोली की बातें सुनकर क्या ढोला मारवाणी को अपने पास लेकर आएगा? आगे की कहानी आपको सुनाएंगे थोड़ी ही देर बाद। फिलहाल वक्त है एक बेहतरीन से म्यूजिकल ब्रेक का। तब तक आप सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
2: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
1: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
3: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
4: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
3: गुरुग्राम? इतनी दूर?
4: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
3: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
4: मतलब?
3: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
4: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
3: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास, भिवाड़ी में। आइए 32 Bites डेंटल क्लिनिक, A ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर, 9871122135। 32 Bites डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
5: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
6: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
7: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
8: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
4: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0% डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
9: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
10: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
9: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी तो बहुत महंगी होगी ना।
10: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
11: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 90.8 FM 24 पर। तो हम बात कर रहे थे ढोली की बात सुन के, क्या ढोला मारवानी को लेकर आएगा। आखिर ढोला ने मारवानी को लाने हेतु पिंगल जाने का निश्चय कर ही लिया, पर मालवनी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए, पर मालवनी उसे किसी तरह रोक देती। एक दिन ढोला अपने ऊंट पर सवार होकर मारवनी को लेने चल ही दिया और पिंगल पहुंच गया। मारवनी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पिंगल में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला मारवनी को अपने साथ ऊंट पर बिठाकर नरवर ले जाने के लिए राजा पिंगल से विदा लेने लगा। कहते हैं कि रास्ते में रेगिस्तान में मरुवनी को सांप ने काट खाया, पर शिव पार्वती ने आकर मरुवनी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मरुवनी को हासिल करना चाहता था, सो वह उसके रास्ते में जाजम बिछा महफिल जमा कर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजर रहा था तो उमर ने उसे मुनहार की ओर ढोला को रोक लिया। ढोला ने मरवनी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल के मुनहार लेने बैठ गया। ढोली गा रहा था और ढोला उमर अफीम की मुनहार ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान ढोली की पत्नी को था, क्योंकि वह पिंगल की बेटी थी। उस उसने चुपके से सारे षड्यंत्र के बारे में मरुवनी को बता दिया। मरुवनी ने ऊंट को एडी मारी, ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मरुवनी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठकर पीछा किया, पर ढोला का वह काला ऊंट उसके हाथ नहीं लगा। ढोला मरुवनी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचते ही चतुर ढोला ने दोनों सौतनों की नोक झोंक का भी समाधान किया और उसके बाद मरुवनी में मारवणी एक दूसरे के साथ आनंद से रहने लगी। तो इसी के साथ ढोला मारू की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कल फिर मिलेंगे राजस्थान की किसी और ऐतिहासिक कहानी के साथ। फिलहाल वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। तब तक आप सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
4: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
5: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
6: विजय फॉर्चून कार्स भिवाड़ी,
7: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
8: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135, भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9983040100 पर।
9: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है।

0: ही स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत। हाँ जी, हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी PNG। कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG, बिल्कुल सही। तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
1: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
2: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
1: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
2: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है 90.8 FM 24 पर और आप सुन रहे हैं सुवक्त तंदुरुस्ती मौज मस्ती प्रोग्राम मेरे यानी RJ सनी के साथ। और तंदुरुस्ती मौज मस्ती के आज के इस प्रोग्राम में दोस्तों आज हमारे साथ हैं सिटी नर्सिंग होम से डॉक्टर सुनीता सिंह, क्लिनिकल डाइटिशियन। तो डॉक्टर साहिबा, आपका स्वागत है 90.8 FM 24 पर।
5: नमस्ते सनी जी, और श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
4: तो दोस्तों, बात करें अपने शरीर की या अपने मन की। मन से शरीर पर प्रभाव पड़ता है और शरीर से मन पर। अगर आपका मन दुरुस्त है तो शरीर भी बहुत दुरुस्त रहेगा, और अगर आप ठीक से खान पान नहीं कर रहे हैं तो आपके मन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं। तो ये दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। और दोस्तों यही कहना है हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर सुनीता सिंह जी जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन हैं। तो मैम, आपका ये जो मानना है कि अगर हम अपने माइंड को हम सकारात्मक रखेंगे तो शरीर पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और निगेटिव रखते हैं तो शरीर में शायद जो विषैले तत्व होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं और जिससे काफी नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खान पान की मदद से कैसे हम शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकाल सकते हैं।
5: देखिए सनी जी, आज मैं इस टॉपिक्स पे चर्चा करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी
4: जी,
5: कि हम जो सोचते हैं यानी हमारी सोच से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबने थॉमस एडिसन, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, शायद उनका नाम सभी ने सुना होगा, जो जिन्होंने एक बल्ब का इन्वेंशन किया था, जो हम बल्ब लगाते हैं, लाइट जो जलाते हैं, उसका इन्वेंशन किया था। एक बार क्या हुआ कि थॉमस एडिसन जो हैं वो एक बार स्कूल जब गए तो वहां से उनको एक लेटर मिला
4: जी।
5: तो वो लेटर उन्होंने पढ़ा नहीं, अपनी माँ को ला के दे दिया सीधे ही। तो उनकी माँ ने जब वो लेटर पढ़ा तो उनको मतलब उनकी आंखों से आंसू आने लगे। तो थॉमस एडिसन ने पूछा अपनी माँ से कि भी माँ, इस पत्र में क्या लिखा है
4: जी।
5: तो उनकी माँ ने ये बोला कि एक्चुअल में इस पत्र में ये लिखा हुआ है कि जो आपका बेटा है थॉमस, ये बहुत इंटेलिजेंट है और हमारे स्कूल में इतनी सुविधाएं नहीं है कि ये आगे अपनी पढ़ाई को चला सके, तो हम इसलिए इसको इस स्कूल से निकाल रहे हैं। तो उनकी माँ ने क्या किया, उनको थॉमस एडिसन को घर पे ही पढ़ाया
4: जी,
5: अपने संरक्षण में उनको पढ़ाया, और फिर एक दिन वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने
4: जी।
5: लेकिन जब वो बड़े हुए और उनको पता चला किसी दिन, तो उन्होंने उस पत्र को पढ़ा
4: जी।
5: जब वो पत्र उनको मिला अपनी माँ के बॉक्स से, तो उस पत्र में ये लिखा हुआ था, एक्चुअल में क्या लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चा इतना सक्षम नहीं है
4: जी
5: कि वो हमारे स्कूल में पढ़ सके और बाकी बच्चों के साथ वो बैठ के पढ़ाई कर सके, तो हम इसलिए इसको इस स्कूल से निकाल रहे हैं
4: जी।
5: तो थॉमस एडिसन ने तब इस चीज का उनको समझ, एक्चुअली उसको उनको समय उनको ना थोड़ा सा मिरर प्रॉब्लम था, मिरर प्रॉब्लम वर्ड्स का कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन उस जमाने में उसकी टेक्निक का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन बाद में ये पता चली थी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि उनकी माँ ने, जबकि वो क्या थे, सक्षम नहीं थे
4: जी,
5: और उनकी माँ ने क्या डाला कि भाई तुम्हारे लेटर में लिखा है कि तुम इतने सक्षम हो, तो दिमाग में उनके वही चीज बैठी हुई थी और वो चीज को लेके वो चले और एक वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। तो मेरा जो लिंक इस जो इस प्रेरणा भरी जो कहानी सुनाने का, यही मेरा मतलब है कि हम जो सोचते हैं
4: जी,
5: वैसे ही जो विचार हमारे मन में आते हैं हमारा शरीर वैसे ही काम करता है
4: जी, जी।
5: तो अब आपने जो मेरे साथ अभी जो हमारा जो चर्चा का विषय है वो यह है कि डिटॉक्सिफिकेशन, यानी हम विषैले तत्व हमारे शरीर में आते कहते हैं कैसे हैं, या वास्तव में ये हमारी सोच से ही हमारे अंदर बनते हैं।

0: जी।
1: तो मैं इस बारे में भी अब ये चीज कहना चाहूंगी कि हकीकत ये है कि जो हमारी सोच है, जैसे अभी मैंने बोला कि जो हमारी सोच होती है उससे इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखो सोच में क्या होता है कि एक तो होते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस
0: जी,
1: जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस, देखो अगर आप इस दुनिया में हैं, हम यहाँ रहते हैं, तो हमारे चारों तरफ क्या होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी होंगी और नेगेटिव वाइब्रेशंस भी होंगी। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें से कैसे लें। तो हमें ऐसे, हमारा ये होता है कि हम अपनी बॉडी को भी ऐसा बना लें कि हम नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव वे से ग्रहण करें
0: जी।
1: तो ये चीज है कि हम इस तरह से जो हमारी बॉडी पर जो सकारात्मक सोच का और नकारात्मक सोच का बहुत बड़ा असर पड़ता है
0: जी। तो दोस्तों जैसा कि आपने जाना अभी डॉक्टर सुनीता सिंह जी ने बताया आपको कि किस तरीके से बॉडी पर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है पॉजिटिव और नेगेटिव बातों का। आप पॉजिटिव सोचते हैं तो बॉडी पर पॉजिटिव रिस्पांस पड़ता है, नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव रिस्पांस पड़ता है। तो आइए बढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छे गाने की ओर, कुछ ही देर के बाद वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कैसे अगर जो विषैले तत्व हैं जो हमारे शरीर में बढ़ रहे हैं तो उनको कैसे हम शरीर से बाहर निकाल सकते हैं खान पान की मदद से। सुनते रहें दोस्तों 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
4: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
5: एक बार फिर से दोस्तों आप सबका स्वागत है 90.8 FM 24 पर और आप सुन रहे हैं इस वक्त मेरे यानी आरजे सनी के साथ तंदुरुस्ती मौज मस्ती प्रोग्राम। और जैसे कि दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं खान पान की मदद से कैसे शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकाला जाए। तो अभी इस वक्त हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए सिटी नर्सिंग होम से डॉक्टर सुनीता सिंह, क्लिनिकल डाइटिशियन, मौजूद हैं। जैसे कि आपको डॉक्टर साहिबा ने बताया था कि कैसे एक सोच का फर्क पड़ता है हमारे शरीर पर। हम अच्छा सोचते हैं, शरीर भी अच्छा रिस्पांस देता है। हम बुरा सोचते हैं, शरीर भी बुरा रिस्पांस देता है। खैर, ये सब बातें हम जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैम, कैसे ये पता करें कि हमारे शरीर में ये जो विषैले तत्व हैं ये बढ़ रहे हैं?
6: हाँ देखिए, इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी आपको कि मैं ये जो बता रही थी कि जो हमारे जो पॉजिटिव वाइब्स का या नेगेटिव वाइब्स का क्या होता है कि एक्चुअली में जब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में जब हम पॉजिटिव वाइब्स होती हैं या हम जो पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं, इसका बहुत बड़ा लिंक है हमारे इन चीजों से। क्योंकि इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना सनी जी, वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है
5: जी।
6: और इस सेल्स के अंदर क्या होता है कि जब हम अच्छी चीज सोचते हैं ना, तो उस समय हमारी बॉडी के अंदर अच्छे बैक्टीरिया जो है वो बिल्डअप होते हैं
5: जी
6: सेल्स के बीच में। और जब हम नेगेटिव सोच हमारे अंदर आती है, तो उसकी वजह से हमारे अंदर क्या होता है कि बैड बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बिल्डअप होते हैं। तो एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो कि क्यों बिल्डअप भी क्यों हुए, क्योंकि अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो अच्छे बैक्टीरिया बिल्डअप होंगे, और अगर हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे तो हमारे बॉडी में बैड बैक्टीरिया जो है वो बिल्डअप होंगे। और इस तरह से क्या होता है कि एक इन लोग इनकी एक कॉलोनीज टाइप से बन जाती है हमारी बॉडी के अंदर। जो आपने एक क्वेश्चन मेरे से अभी किया था कि हम इसका पता कैसे करें कि हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कितनी है या विषैलापन हमारी बॉडी में कितना है। देखिए, एक दो टेस्ट होते हैं इसके लिए नॉर्मली, जो मैं सिंपल सा टेस्ट बताऊंगी कि आप जब भी अपनी जीभ को देखेंगे, जब हम अपनी जीभ को देखते हैं तो आप उसके ऊपर देखेंगे कि ज्यादातर हमारी जीभ पिंक दिखाई देती है, लेकिन जब विषैले तत्व हमारी बॉडी में भर जाते हैं तो हमारी जीभ सफेद सी दिखने लगती है, सफेद पैचेस हमको दिखने लगते हैं। तो इससे कुछ हद तक हमें ये पता मतलब लग जाता है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी यानी विषैला तत्व जो है बढ़ रहे हैं। हालांकि वो विषैले तत्व अभी हमारी बॉडी को हार्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी में हमारे अभी कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, बॉडी हमको अनकम्फर्ट फील नहीं हो रही है, हमें कोई उससे दिक्कत नहीं आ रही है, तो हम उस तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन विषैले तत्व हमारी बॉडी में बनना चालू हो जाते हैं। तो एक ये वजह, एक ये भी सिम्ट है कि हम इस तरह से अपनी बॉडी के अंदर विषैले तत्वों को देख सकते हैं कि किस तरह से विषैले तत्व हमारी बॉडी के अंदर हैं या इस समय हमारी बॉडी में नहीं है
5: जी। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छे गाने की ओर। कुछ ही देर के बाद दोस्तों वापस लौटेंगे। तो जैसा कि आपने अभी जाना किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि हमारे शरीर में जो विषैले तत्व हैं वो बढ़ रहे हैं, जिन लोगों में विषैले तत्व बढ़ रहे हैं तो कैसे उन विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकाला जा सकता है ताकि हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ बना रहे, तो जानेंगे। लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं एक बहुत ही अच्छे गाने को। सुनते रहेगा दोस्तों 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: एक बार फिर से दोस्तों आप सबका स्वागत है 90.8 FM 24 पर और आप सुन रहे इस वक्त तंदुरुस्ती मौज मस्ती प्रोग्राम मेरे यानी RJ सनी के साथ। दोस्तों जैसा कि इस वक्त हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कि खान पान की मदद से कैसे शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकाला जाए, और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ सिटी नर्सिंग होम से डॉक्टर सुनीता सिंह जी क्लिनिकल डाइटिशियन उपस्थित हैं। जैसे कि मैम ने बताया था आपको कि कैसे हमारे शरीर में जो विषैले तत्व हैं अगर वो बढ़ रहे हैं तो उसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। आप अपनी जीभ को देखिए और जीभ अगर सफ़ेद ज़्यादा दिख रही है तो उस पर कुछ हद तक ये चांसेस है कि आपके शरीर में विषैले तत्व बढ़ रहे हैं। तो मैम इसके बाद जब हमने इस तरीके के टेस्ट कर लिए, खुद से ही हमने सेल्फ एग्जामिन के जरिए ये जान लिया, तो उसके बाद अगर हमें ये पक्का हो जाता है कि ये विषैले तत्व बढ़ रहे हैं तो फिर उसके बाद हम कैसे इसको शरीर से बाहर निकाल सकते हैं?
5: देखिए, अगर सबसे पहले तो मैं एक चीज और ये भी बताना चाहूंगी कि कई बार जैसे अभी श्रोता भी जो सुन रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि अगर डाइटिशियन मैम है तो वो अभी खाने पीने की बात नहीं कर रही है, अभी साइकोलॉजी या इस तरह की बात कर रही है कि सकारात्मक सोच और सोच और मतलब नकारात्मक सोच का क्या असर होता है। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि हमारे खान पीन में इन दो चीजों का बहुत महत्व है। अगर हम इन दो चीजों को भी यानी हम मन की स्थिति को भी अगर अपन साथ में लेके चलते हैं तो उससे क्या होता है कि शरीर से हमें उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और दूसरा जो आपने ये क्वेश्चन किया है कि हम अपने शरीर को कैसे डाइट के थ्रू दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूंगी जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हम अपने मन को डिटॉक्स करना होगा। मन को डिटॉक्स कैसे करेंगे? पॉजिटिव थिंकिंग करके। तो ये तो मन हमारा डिटॉक्स हो गया, यानी हमने नेगेटिव चीजों को बाहर कर दिया, यानी उनकी धुलाई कर दी, उनको क्लीन कर दिया। सेकेंड थिंग ये है इसके अंदर कि कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी को भी मेन रीजन जो है वो है बैड बैक्टीरिया का। अगर आपको कब्ज रहती है या आपको एसिडिटी रहती है तो ये भी एक कारण है कि आपका अंदर जो है वो विषैले तत्व जो इकट्ठे होते जा रहे हैं उसकी वजह से भी इकट्ठे होते हैं। तो उस समय हमको अपनी बॉडी के अंदर कब्ज या एसिडिटी को नहीं होने देना चाहिए। दूसरा कारण जो ये है कि आज अगर हमारे आप चारों तरफ का वातावरण देखते हैं उसमें क्या एयर पॉल्यूशन भी है। अब हमको क्या करने की, अगर मान लीजिए एयर पॉल्यूशन तो है लेकिन एयर पॉल्यूशन है और ये भी लोग कहते हैं कि मैडम अब आप कहते हैं कि अच्छा खाना खाइए, आप वेजिटेबल्स लीजिए या जूस लीजिए, लेकिन उसमें भी तो केमिकल्स डालते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ठीक है अगर उसमें भी है केमिकल्स, मैं मानती हूँ इस चीज को, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर कि हम जो भी चीजें फल या वेजिटेबल्स अगर अपन यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले जो उसमें जो केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में जाएं तो पहले तो हम उनको दूर करें
4: जी।
5: तो उनको सबसे पहले खूब अच्छी तरह से वॉश करके और आप सब्जियों के और फलों को अच्छी तरह साफ करके ही यूज करें, उनका जूस यूज करें, फलों का और सब्जियों का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं आप।
4: मैम जैसे कि आपने बताया कि अगर फल सब्जी जो इसपे बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल भी होता है, छिड़काव होता है अक्सर, आप जानते हैं कि मार्केट में ऐसे ही फल सब्जियां ज्यादा आ रही हैं, तो फिर कैसे वॉश करने के तरीके में हम क्या कुछ कर सकते हैं जिससे कि सारे उसके ऊपर के जो केमिकल हैं वो निकल जाए?
5: जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था इसको कि देखो दो तीन तरीके हैं
4: जी,
5: जो आपके लिए आरामदायक है, जिसमें आपको सुविधा हो, वो आप कर सकते हैं। पहला तो ये है कि साफ पानी में अच्छी तरह से धोने के बाद थोड़ा देर उसको गर्म पानी में या नमक डाल के गर्म पानी में भी रख सकते हैं
4: जी।
5: तो ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप एक बार उसको अच्छी तरह से वॉश करके और कुछ 5 मिनट के लिए उसको पानी में थोड़ा एक ढक्कन सिरका डाल के, यानी सब्जी के अकॉर्डिंग आप उसमें थोड़ा सिरका डाल के, और उसको भी आप 10 मिनट या 5 मिनट के लिए उस सब्जी को या उसको फल को थोड़ी देर के लिए आप रख देंगे उससे, तो उससे भी आपका ये होगा कि जो ऊपर जो ऊपर जो केमिकल्स उस पे डाले हुए, तो आप उसको आसानी से दूर कर सकते हैं
4: जी।
5: और फिर आप उसको आप यूज भी कर सकते हैं, तो उससे कोई इससे दिक्कत नहीं आएगी
4: जी। आगे तो आइए दोस्तों, एक गाने की ओर बढ़ते हैं, कुछ ही देर के बाद वापस लौटेंगे, तो कुछ और बातों को जानेंगे कैसे हम खान पान की मदद से और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दे करके हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं और विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मैसेज के जरिए 8432665588 पर, और उन सवालों के उत्तर दोस्तों हम आपको अगले एपिसोड में देंगे, जब हम डॉक्टर सुनीता सिंह जी से तंदुरुस्ती मौज मस्ती के अगले एपिसोड में जब उनसे मुलाकात होगी। सुनते रहेगा दोस्तों 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: एक बार फिर से दोस्तों आप सबका स्वागत है 90.8 FM 24 पर और आप सुन रहे हैं इस वक्त तंदुरुस्ती मौज मस्ती प्रोग्राम मेरे यानी RJ सनी के साथ। और जैसे कि दोस्तों इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं खान पान की मदद से कैसे शरीर के जो विषैले तत्व हैं उनको बाहर निकाला जाए। तो इस विषय पर जानकारी दे रही है इस वक्त हमारे साथ सिटी नर्सिंग होम से डॉक्टर सुनीता सिंह जी, क्लिनिकल डाइटिशियन। जैसे कि दोस्तों अब हमने बहुत सारी बातें जान ली कि कैसे शरीर में जो विषैले तत्व होते हैं वो कैसे शरीर से बाहर निकाले जा सकते हैं, तो अब ये क्यों ना जान लिया जाए कि ये तत्व कहाँ से आ जाते हैं, आखिर ये पनपते कैसे हैं हमारे शरीर के अंदर। तो मैम मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में जानकारी दें।
4: ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सनी जी, कि हमें पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि आते कैसे हमारे शरीर में। अगर हम उन्हीं को रोक लें तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं या समस्याएं उससे हम पहले ही बचते रहेंगे। तो इसके जो आने के जो कारण है, देखो सबसे पहला जो कारण है इसका कि जो रिफाइंड फूड खाते हैं ना, रिफाइंड का मतलब जैसे रिफाइंड शुगर हो गया, जो रिफाइंड शुगर आपने देखा होगा कि कई तरह से यूज की जाती है, जैम्स में यूज करते हैं लोग, इसमें केक्स वगैरह में, चॉकलेट्स में। तो ये जो रिफाइंड शुगर जो होती है ये टॉक्सिसिटी को बढ़ाती है। सेकेंड, रिफाइंड फूड में आपका जैसे मैदा की से बनी चीज हो गई, पिज्जा, बर्गर, ये जितने भी जंक फूड हैं ये सारे जो है इनको हमारी टॉक्सिसिटी को बढ़ाते हैं। प्रोसेस्ड फूड जितने भी होते हैं, केन फूड यानी डब्बे में जो बंद फूड आते हैं जिनको कि प्रिजर्वेटिव डाल करके, जिनको प्रिजर्व करके और मार्केट में भेजा जाता है, ये सारी चीजें जो होती है ना, इसमें रीजन होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरियाज को बिल्डअप होने में मदद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बिल्डअप होने देते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब हम बहुत लंबे समय तक बीमार चलते हैं तो जो हम एंटीबायोटिक्स जो खाते हैं उससे भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ती है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हम मेडिसिन खाना बंद कर दें, लेकिन जब आपका मेडिसिन चल रहा है उस दौरान हमको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान देना चाहिए, जिससे कि मतलब जितनी टॉक्सिसिटी बॉडी में आ रही है वो साथ के साथ बॉडी से जो टॉक्सिसिटी है वो वॉश आउट होती रहे साथ के साथ। इसलिए हम ज्यादातर, मैं भी यही सलाह देती हूँ कि जब भी आपका मेडिसिन चल रहा है या इस दौरान आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, लिक्विड डाइट का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, जैसे वेजिटेबल जूस यूज करें, फ्रूट जूस यूज करें, और इसके अलावा जो स्टीरॉइड्स जो मेडिसिन होती है इनसे भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ती है। इसके अलावा अगर जिसका जो कैंसर के जो ट्रीटमेंट चलते हैं, जो कीमोथेरेपी होती है, उससे भी हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। एंड इसके अलावा मतलब साइनस की फॉर्म में भी जो है बैड बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, और ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, बच्चे जो चॉकलेट्स वगैरह बहुत खाते हैं, केक बहुत खाते हैं, जो इन सब चीजों के साथ बहुत इंडल्स रहते हैं यानी बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं इन चीजों से, उनके अंदर ये जो बैड बैक्टीरियाज जो है ना ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम ध्यान रखें तो कुछ हद तक हम इन चीजों से बच सकते हैं।
3: तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं एक गाने की ओर, कुछ देर के बाद वापस लौटेंगे तो कुछ जानकारी लेंगे इसी विषय पर। सुनते रहिएगा 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
4: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
5: एक बार फिर से दोस्तों आप सबका स्वागत है 90.8 FM 24 पर और आप सुन रहे इस वक्त तंदुरुस्ती मौज मस्ती प्रोग्राम मेरे यानी RJ सनी के साथ। और जैसा कि दोस्तों इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं कि खान पान की मदद से कैसे शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकाला जाए, तो दोस्तों अभी तक हमने बहुत सारी बातों को जान लिया कि क्या होते हैं विषैले तत्व, शरीर में कहां से आ जाते हैं, कैसे बाहर निकाला जा सकता है। तो आइए अब इस विषय पर और एक प्रश्न उठता है इस विषय से जुड़ा हुआ, और वो प्रश्न ये है दोस्तों कि क्या खान पान की मदद से कुछ ऐसी डाइट हम फॉलो करें जिससे कि ये जो हमारे शरीर में जो विषैले तत्व बढ़ रहे हैं तो वो बाहर निकाले जा सके। तो मैम, मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप बताएं।
6: जी जी, देखिए सनी जी, ये हमारे जो शरीर में विषैले तत्व बढ़ते हैं इनको दूर करने के लिए सबसे पहले तो ये होगा कि हमारी बॉडी में उसकी एल्किनिटी यानी क्षारिता को बढ़ाना पड़ेगा।
5: जी,
6: क्षारिता हमारी बॉडी में हमको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब हमारी बॉडी एसिडिक ज्यादा हो जाती है ना तो ये बैक्टीरियाज उसमें पनपने लगते हैं। तो बॉडी की क्षारिता बढ़ाने के लिए यानी उसमें पीएच लेवल को चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए मैं बताऊंगी कि मैंने ये तो आपको पहले ही बता दिया था कि हमको क्या क्या नहीं करना, फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में एक बार दोबारा रिवाइज करती हूँ उस चीज को। कि एक तो व्हाइट शुगर को बिल्कुल अवॉइड करें, ग्लूटेन यानी वीट का पूरे टाइम नहीं, कम से कम सप्ताह में एक दिन इसको आप अवॉइड करें। जैसे पहले टाइम पे फास्ट रखे जाते थे, तो फास्ट रखने के पीछे इसको इसलिए स्पिरिचुअल से जोड़ दिया था कि लोग इसको करें।
5: जी जी,
6: एंड अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहें।
5: जी,
6: एंड जो बहुत ज्यादा ठंडी चीजें हैं जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ऐसी चीजों को ज्यादा से ज्यादा तो अवॉइड करें। अब हमको लेना क्या है, मेन ये आता है कि हम खान पीन में ऐसा क्या लें। तो जो अपना सल्फर रिच फूड जो होते हैं, अब सल्फर रिच फूड क्या होते हैं वो मैं बता देती हूँ। सल्फर रिच फूड में आता है आपका प्याज, लहसुन, गोभी, शिमला मिर्च, ब्रोकली। तो ज्यादातर ये जो चीजें हैं ये हमारी सल्फर रिच आती है, इसमें सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जो हमारी बॉडी में ये बैड बैक्टीरिया को भगाने का काम करता है, एक तरह से हम ये बोलें तो। और सेकंड थिंग जो इसके अंदर आती है कि आप ये जरूर ध्यान रखें कि जो कुछ एक दिन के लिए या कुछ दिन के लिए, जैसे चार या एक सप्ताह का आप ऐसे कर सकते हैं कि जिसमें एक दिन आप पूरा फास्ट रख लें, जैसे जिसमें आपका ये है कि हमें सिर्फ वेजिटेबल सॉरी फ्रूट्स ही खाने हैं सिर्फ, या हमको सिर्फ वेजिटेबल्स खाने। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब अगर आपके अंदर लगता है कि टॉक्सिसिटी बढ़ रही है या आप थोड़ा सा अनकंफर्ट फील कर रहे हैं तो उस समय क्या करें, अगर कुछ लोग जूस भी पीते हैं तो उसको भी थोड़ा डाइल्यूट कर लें, एकदम कंसंट्रेट जूस ना पिए। और ऐसे टाइम पे ज्यादा ज्यादा जो मैंने बोला कि क्षारिता बढ़ाने के लिए जो सब्जियां का जो सूप होता है ना या सब्जियों का जूस, ये क्षारिता को बढ़ाता है हमारे शरीर के अंदर। तो एक दिन का मैं छोटा सा डाइट प्लान बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए सुबह के समय आप उठें तो थोड़ा सा गर्म पानी, गुनगुना पानी लें और हल्दी डाल के उसमें चुटकी भर हल्दी डाल के एक गिलास गर्म पानी बॉईल करके पिए, या दालचीनी चुटकी भर डाल के पी सकते हैं। और इसके अलावा आप 9 बजे के करीब जब ब्रेकफास्ट लें तो उसमें आप कोशिश करें कि हम सब्जियों का सूप लें। और इसके बाद दोपहर के खाने में आप कोशिश करें कि वीट की रोटी न लाके गेहूं के, नॉर्मल खाना खाएं आप बेशक, उस दिन आप गेहूं की रोटी ना लेके जैसे बाजरे की रोटी या जौ की या मिक्स करके आटा, इस तरह से आप रोटी ले सकते हैं। और सब्जी में जो मैंने बोला कि गोभी की सब्जी हो गई और शिमला मिर्च हो गई, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं, सल्फर रिच डाइट ले सकते हैं। इसके अलावा आप शाम के खाने में सूप जरूर लें, वेजिटेबल सूप। वेजिटेबल सूप का क्या फ़ायदा है कि एक तो इसमें कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, इसमें फाइबर भी होता है, लो कैलोरी फूड होता है ये। तो ये हमारी बॉडी को, जो सूप जो होते हैं ना वेजिटेबल सूप, ये हमारी बॉडी में क्लीनिंग का बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी कि अगर हम इसके साथ, खान पीन के साथ साथ, फिर मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ से हम शुरू हुए थे, कि अगर हम किसी भी टारगेट को लेके चलते हैं जो कि हम पॉजिटिव सोच के साथ चलते हैं कि वो मुझे करना है या ये काम मेरा होगा, तो वो काम आपका जरूर होगा और आप उसमें जरूर सफलता हासिल कर लेंगे, चाहे वो डाइट प्लान ही हो या कोई भी और आपका काम हो सकता है। अगर नेगेटिव सोच लेके चलेंगे कि पता नहीं मैं 7 दिन में अपने आप को, बॉडी को क्लीन कर पाऊंगा कि नहीं, या मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी। तो डिटॉक्स करने के लिए बॉडी के अंदर सबसे पहला जो है वो है पॉजिटिव थिंकिंग का होना, आपकी सकारात्मक सोच का होना।
5: जी, तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं एक गाने की ओर, कुछ ही देर के बाद वापस लौट रहे हैं। सुनते रहिएगा दोस्तों 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: एक बार फिर से दोस्तों आप सबका स्वागत है 90.8 FM 24 पर। और जैसा कि दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे हैं तंदुरुस्ती मौज मस्ती प्रोग्राम, और आज के इस प्रोग्राम में दोस्तों बात हो रही है कि खान पान की मदद से कैसे शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकाला जाए। तो जैसे कि हमारे साथ इस वक्त सिटी नर्सिंग होम से डॉक्टर सुनीता सिंह जी, क्लिनिकल डाइटिशियन, उपस्थित हैं इस प्रोग्राम में, और प्रोग्राम भी अब कुछ ही देर के बाद अपने समापन की ओर बढ़ेगा, तो वक्त कम है। तो मैम, जैसा कि आपने आज के इस प्रोग्राम में खान पान की मदद से कैसे शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकाला जाए ये तो आपने बताया ही, साथ ही आपने खास तौर पर विचारों पे बहुत ज्यादा बल दिया कि विचार हम अच्छे रखें तो हमारा जो शरीर है वो अच्छे से रिस्पॉन्स देगा और अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी, जिससे शरीर जो है स्वस्थ बना रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि चलते चलते आप इसी के बारे में आप कुछ और बातें बताएं श्रोताओं को, और क्या हिदायतें बरत सकते हैं श्रोता, उसके बारे में बताएं।
3: देखिए, जो अब आपने देखा है कि मैं अब हमारे भिवाड़ी के ही श्रोता हैं ज्यादातर सुनने वाले, तो भिवाड़ी में वातावरण आप देख ही रहे हैं कि एयर पोल्यूशन वाला है वातावरण, और सेकंड थिंग वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी है यहाँ पर। तो इन दो चीजों से बचने के लिए एक तो ये कि अपना पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, पानी की मात्रा को कम ना करें। मैंने देखा है सर्दियों में लोग पानी की मात्रा कम कर देते हैं कि मैडम प्यास नहीं लग रही, क्या करें, दिन में एक ही ग्लास पानी पीते हैं
2: जी।
3: तो डिटॉक्सिफिकेशन में मैं फिर से एक बार ये चीज कहना चाहूंगी कि डिटॉक्सिफिकेशन में यानी हमारी बॉडी से विषैले तत्वों को निकालने में पानी का बहुत बड़ा रोल है
2: जी।
3: आप सिर्फ पानी ही पी करके अपने दिन में कम से कम अभी इस टाइम पे भी 7 से 8 ग्लास 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। फिर आगे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वर्क कर रहे हैं, आपका वेट कितना है, आपका एज कितना है, ये सब चीजें माइंड करती हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, अब आजकल आपने देखा होगा कि हल्दी का बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, अभी जब से ये अपना कोरोना का जब हुआ तब से हल्दी का बहुत ज्यादा प्रचलन हुआ। लेकिन मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगी कि हल्दी जब हम लेते हैं बॉडी के अंदर तो एज इट इज जितना हम लेते हैं उतनी ज्यादा वो उतनी पूरी की पूरी मात्रा एब्जॉर्ब नहीं होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो आपने देखा होगा कि हम पूरे दिन हल्दी खाते हैं, सुबह से ब्रेकफास्ट में भी हल्दी वाली सब्जी हो गई, लंच हो गया, डिनर हो गया, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ऐसे ये नहीं कह सकते कि हल्दी बहुत मात्रा में जा रही है। सेकेंड थिंग ये कि हल्दी के अंदर एक एलिमेंट होता है जिसको कर्क्यूमिन बोलते हैं, जो कि उसके अंदर कैंसर के रोगों से लड़ने में बहुत सहायता करता है, वो उसको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है उसकी। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर हम हल्दी के अंदर थोड़ा सा अगर काली मिर्च डाल दी जाए, बहुत जरा सी पिंच ऑफ काली मिर्च अगर हम डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हल्दी का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। तो अगर मान लीजिए आप हल्दी को अगर किसी मेडिसिन के रूप में लेना चाह रहे हैं जिस समय, तो आप उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, जैसे कोल्ड एंड कफ फीवर में अगर लेना चाह रहे हैं तो उसमें चुटकी भर अगर आप काली मिर्च डाल देंगे तो उससे क्या होगा, हल्दी का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो अगर एक ग्लास पानी अगर आप बॉयल कर रहे हैं तो उसमें 1/4 हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें, तो एक तरह से वो पूरा आपका उसका मेडिसिनल यूज हो जाएगा
2: जी जी।
3: और कोल्ड कफ एंड फीवर में, वायरल फीवर में इसका बहुत ज्यादा मतलब हल्दी यूजफुल रहती है
2: जी। तो जैसा कि वक्त हो चुका है कार्यक्रम के समापन का, तो डॉक्टर सुनीता सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप FM 24 पर उपस्थित हुई और आपने स्टूडियो में आकर के इतनी अच्छी जानकारी दी श्रोताओं को, बहुत बहुत धन्यवाद FM 24 की ओर से।
3: नमस्ते सनी जी, और मेरे श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार।
2: तो आइए दोस्तों, अब आपको एक गाने के साथ छोड़े चलते हैं, लेते हैं आपसे इजाजत, मुलाकात आपसे होगी अगले एपिसोड में।

0: इवनिंग टी विद शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग भिवाड़ी। भिवाड़ी के अपने रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम 24 पर हैं आप और शो का समय शुरू हो चुका है। कौन सा शो? शो बोले तो इवनिंग टी विद शर्मा जी, आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे यश के साथ हैं आप। ये लाइन सुनते ही या मेरे शो की ट्यून सुनते ही, जिंगल सुनते ही, अगर आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ना बॉस, वही कनेक्ट, वही फ्रीक्वेंसी जो आपकी और मेरी मैच करती है ना, मुझे यही बैठानी होती। इसीलिए तो मैं हर शाम को खिंचा चलाता हूं आपके लिए एक जोरदार सा शो बना करके, बहुत सारी अपडेट्स लेकर के, बहुत सारी बातें लेकर के। जैसे आज हम बात करेंगे, कुछ गानों के ऊपर भी हम बात करेंगे और जो नई लेटेस्ट रिलीज आजकल बॉलीवुड की आई हुई है शो पे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मतलब बहुत सारा इंफॉर्मेशन का, बहुत सारा नॉलेज का, बहुत सारी बातों का पिटारा लेकर के आ गया हूं आपसे मुकालात करने के लिए। एलोपोजी अगर कोई गलत शब्द बोल दूं तो, देखो ऐसे शब्द बोल बोल करके ना अच्छा लगता है। जैसे एपोलॉजी को अगर आप बोलो एलोपोजी, ठीक है, जैसे मुकालात को बोलो आप मुलाकात, ऐसे शब्द बोलो किसी से बात करते करते, उसको थोड़ा फनी सा बनाओ। ज्यादा सीरियस रहना है ना भैया, उसके लिए आपको थोड़ा सूखे पेड़ जैसा होना पड़ेगा, थोड़ा ग्रीन रहो, थोड़े फ्रूट वाले रहो, ताकि लोग बाग आपके पास आए, आपकी छाया में रहे। ऐसा कहते ना, फलदार फ्रूट रहो, अच्छे फ्रूट रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, जस्ट लाइक अ सन फ्लावर, सूरज की तरह मुस्कुराओ, सूरज की तरह चमचमाओ। वो जो आशीर्वाद देते हो एक्चुअली प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में भी उतारो, तब आपको आएंगे मजे। अब हो गया बहुत सारा ज्ञान और आज के शो की थोड़ी बहुत अपडेट भी दे दी है, तो चलिए सुनते हैं अब जोरदार वाला गाना आपके लिए जो मैंने लगा रखा है। एक बार फिर से जोरदार वाली गुड इवनिंग भिवाड़ी, आपके अपने रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम 24 पर हैं आप और शो का नाम, वो तो आपके लिए जिंगल में वापस लगा ही देता हूं, सुनते रहें।

इवनिंग टी विद शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
3: यहां उपलब्ध हैं दो आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
2: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
4: अरे कहाँ जा रही हो?
5: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
4: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
5: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
4: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावलू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
6: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
7: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
8: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
9: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, कॉल 8058304500।
10: श्री राम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा, गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
11: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

इवनिंग डेविड शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। एक बार फिर से स्वागत है आपका इवनिंग डेविड शर्मा जी पे। आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे यश के साथ हैं आप। और हेल्थ अपडेट कैसी आपकी? अब मैं जब आपसे हेल्थ अपडेट लेना चाह रहा हूं ना, तो आप भी समझ चुके हैं कि ये जो मौसम है ये इतना खतरनाक वाला हो रखा है कि दिन में गर्मी तो आप चला लेते हो एसी, और शाम को और सुबह होती है ठंड। पर्टिकुलरली अगर हम सुबह की बात करें, जब आप अपनी ब्लैंकेट या रजाई या जो भी आप ओढ़ के सो रहे हैं आप उसको हटाते तो आपको सही में ठंड लगती है। बट आप वो दिन वाली अप्रोच से ही सीधा उठ के वॉशरूम जाना, किचन जाना या जो भी आपके काम होते हैं वो करने लगते हो, और आप भूल जाते हो कि भैया सुबह तो ठंड है, शाम को ठंड है, दिन में ही तो अकेली ठंड नहीं है। आप सुबह ठंड पकड़ लेते हो और फिर हो जाती है आपकी तबीयत खराब। अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है और आपको लग रहा है कि हो सकती है, अगर हो रही है तो भैया डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे से डॉक्टर को दिखा करके खुद का ट्रीटमेंट कराओ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार शायद होने वाली है, कोल्ड पकड़ने वाला है, तो पहले ही ये जो गर्म पानी पीना, ठीक है, खुद को प्रोटेक्टेड रखना, मास्क पहनना, औरों को बचाना, ये सब प्रैक्टिसेस आप शुरू कर दो। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नॉर्मल अपडेट में तो हम ये सब कर सकते हैं, बट पर्टिकुलरली जब हम भिवाड़ी की बात करते हैं, हम उस एरिया में रहते हैं जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, और पॉल्यूशन के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए होती है वो होती है स्किन इन्फेक्शंस या स्किन डिजीज। अब आप मुझसे पूछेंगे ये तूने ये तो बता दिया कि स्किन डिजीज हो रही है या स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन क्या है? और इसी के साथ अगर आपको सुनना है कोई भी जोरदार सा गाना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8432665588। तबियत का रखे ध्यान बहुत ज्यादा, क्योंकि ये मौसम है मेरी जान आपको परेशान करने के लिए एकदम रेडी। थोड़ा सा ध्यान रख लो, बस एक बार पीक सर्दियां आंखें चली जाए फिर आप मौज करना, क्योंकि गर्मियां फिर आपका वेलकम करने के लिए जिस हिसाब से सर्दी है ना एकदम अग्रसर बैठी है बॉस। चलो मौसम की होगी बहुत सारी बातें, बहुत सारी वेदर अपडेट हो गई आज के लिए। अब सुनते हैं एक बढ़िया सा तड़कता भड़कता सा गाना।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: क्या कर रही है?
3: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
2: फिर से? अभी तो गई थी।
3: हाँ, फिर से जाना है।
2: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
3: गाड़ी नॉट इन बजट।
2: अरे गांधी मोटर्स है ना?
3: गांधी मोटर्स?
2: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
3: तो कब चले?
2: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
5: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया सदर बाजार के पीछे गोपीनाथ रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
6: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
7: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
8: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, Tommy Hilfiger, Oakley, Prada, Jeez, Essilor, Crizal, Vision RX और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
7: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
8: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
7: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
9: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को संवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
5: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
6: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
5: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
6: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
5: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
7: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है, CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
8: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
7: बोल ललंकार, CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
9: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
10: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: न्यू गर्ग सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरी।

0: ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, एमआरपी की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है एमआरपी को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। शाम की

अभी जो ये सॉन्ग प्ले हो रहा था ना, इसकी जो लास्ट लाइन थी, मैंने सोचा उनको सुनकर के ना मेरे दिमाग में सवाल उत्पन्न हुए, कुछ सवाल आए हैं, तो मैं सोचा एक बार आपसे ना डिस्कस करता हूँ। जो लास्ट लाइन है उसकी वो है, सब कुछ मेरा चाहे नाम अपने लिखा ले, बदले में इतनी सी तो यारी निभा ले, जग की हिरासत से मुझको छुड़ा ले, अपना बना ले, बस अपना बना ले। अब अगर सच में वो कुछ सब कुछ अपने नाम करवा लेगा तेरे से, या तेरा पार्टनर अगर तेरे से करवा लेता है, तो तुझे दिक्कत नहीं होगी। या वो तेरे को अगर दुनिया से, कहते ना वो कह रहा है ना कि जग की हिरासत से मुझको छुड़ा ले, अगर सब कुछ आइसोलेट होकर के एक रूम में या एक हाउस में या एक एरिया में अकेले हैं, तो आपको लगता है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कभी कभी ना ये जो गाने बनाए जाते हैं, इनके लिरिक्स को हम प्रैक्टिकलिटी में सोचने लगे ना, तो हमें लगेगा यार क्या बकवास बनाए, बट वो फीलिंग के साथ इतने बढ़िया तरीके से उसको कंपोज किया जाता है, और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने अरिजीत सिंह की आवाज में डाल दिए जाते हैं, तो गाने का एकदम एनिग्मा अलग हो जाता है, एक ऑरा अलग हो जाता है, एकदम फील ही अलग हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो यार कुछ गाने, और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको सही में किसी की वैल्यू है तो उसको जाने क्यों दे रहे हो, वो मतलब उसको स्पेशल फील कराओ जब वो आपके साथ है। उसको जाने के बाद उसको बोलो कि आई एम सॉरी, मैं अब तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार, गाने के बाद उसको मनाना और ये सब वर्डिंग्स देना, अगर इनको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने लगोगे, सोचो आपका पार्टनर अगर इतना प्रैक्टिकल हो, तो इस गाने के ऊपर ना आपकी लड़ाई और बढ़ जाएगी कि जग की हिरासत से मुझको छुड़ा ले। भाई सब कुछ छोड़ दिया तो दूध वाला नहीं आ रहा, चाय वाला नहीं आ रहा, खाना खाने बाहर कहाँ जाओगे, क्या करोगे दुनियादारी में? लेकिन सही बताऊं, हम इतना सोचते नहीं, हम गाने की फील में इतने खो जाते हैं ना कि हमें ध्यान ही नहीं रहता है वो ये गाना है। हम जस्ट अपने प्यार में इतना खो जाते हैं। आप भी अपने मैडम के प्यार में खो जाते हो ना, और मैडम आप भी, सर के लिए ये गाना तो बनता है यार, है ना? को ऐसे ही गाने पसंद है, इसलिए तो मैं लेकर के आता हूँ इतने बढ़िया बढ़िया से गाने। सुन रहे हैं आप इवनिंग टी विद शर्मा जी, आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आर जे यश को। और मेरी जो इम्पोर्टेंट लाइन है ना इस लिंक के ऊपर, वो यही कि अगर कोई है जिससे आप प्यार करते हो, कोई है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब वो आपके पास है, जब वो आपके साथ है ना, उसको तभी फील कराओ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जाने के बाद फील कराना ना इतना अच्छा नहीं लगता है, ना उसको ना आपको, ठीक है? थोड़ा सोचिएगा। सुनते रहे 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: एडवर्टिजमेंट के लिए संपर्क करें 9783001786 पे या फिर 8432665588 पे।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: शाम

0: इवनिंग टी विद शर्मा जी, ओनली ऑन 90.8 एफएम 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: शाम का वो समय जब मेरा हो चुका है आपसे विदा लेने का टाइम, मतलब डेली 5 से 7 तो अपनी ट्यूनिंग एकदम फिक्स रहती है। मैं आपके लिए बहुत सारे गाने, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत बढ़िया बढ़िया सी न्यूज लेकर के आता हूँ, लेकिन 7 बजे के आसपास मेरा हो जाता है टाइम कि मैं अपने घर को जाऊं, कल के लिए तैयारी करूं ताकि कल बहुत सारी अपडेट्स लेकर के आऊं। और वैसे भी ना, अब आपका फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम हो गया, देखो कितना ज्यादा टाइम हो गया। तो जाने से पहले 2 रिक्वेस्ट, एक जो मैं आपसे हर बार करता हूं कि आपको मेरा ये शो कैसा लगता है, मतलब जो पूरे दिन भर की हसल बसल के साथ मैं इतनी बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेकर के आता हूं, बढ़िया बढ़िया गाने लगाता हूं, बहुत सारी चटपटाखेदार अपडेट्स लेकर के आता हूं, उसके लिए आपका क्या फीडबैक है। आप हमें कॉल करें, आप हमें मैसेज करें ऑन 8432666588 और बताएं कि आपको कैसा लगता है मेरा शो। दूसरा कि 90.8 एफएम 24 देख रहा है एक फीमेल रेडियो जॉकी। अगर आप एक फीमेल है और आपको लगता है कि आपके अंदर है वो टैलेंट एक रेडियो जॉकी बनने का, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 8432666588। और अगर आप होते हैं शॉर्टलिस्ट तो बहुत ही जल्द आप हमारे साथ शो करने वाले हैं, आप मेरे साथ शो को होस्ट करेंगे और पूरे भिवाड़ी को आपकी आवाज सुनाई दे जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी भी फीमेल को अपनी वॉइस के ऊपर भरोसा है कि वो बहुत ही कैची वॉइस है और वो भिवाड़ी की ऑडियंस को सुननी चाहिए, तो वो हमें कॉल कर सकती है। और अगर आपको मेरे शो रिलेटेड भी कोई फीडबैक देना है तो भी आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं 8432666588 पे। तो अब समय हो चुका है मेरा आपसे विदा लेने का। इट वॉज अ लवली इवनिंग विद यू, आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। पर दिस साइड यश शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द इवनिंग, गुड बाय, बाय बाय, हास्ता ला विस्ता, सिया, टेक केयर, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट आरजे यश, यानी कि आपका खुर्राफाती यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो बहुत ही ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातों का शोर लाता है। लेकिन साहब, बात ये भी है कि जब भी यश आता है तो अपने साथ में बहुत ढेर सारी खबरें भी लेकर के आता है। तो साहब, आज एक के बाद एक प्यारी प्यारी सी खबरें मेरे

ये फुल हाल तो मेरे प्यारे से लिसनर्स, आप लोग एंजॉय कीजिएगा इस प्यारे से गाने को यश यू गया और यू आया लेकर और भी ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें। चले एंजॉय कीजिएगा इस गाने को और हाँ कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: जब बात आपकी मुस्कान की हो तो समझौता क्यों। अब स्पेशलिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं। आइए डेंटल एक्सपर्ट्स भिवाड़ी, भिवाड़ी का इकलौता डेंटल क्लिनिक, जहां पूरी टीम MDS स्पेशलिस्ट्स की है और जिन्हें 15 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर विनोद यादव MDS ऑर्थोडोंटिस्ट, भिवाड़ी के एकमात्र ब्रेसेस स्पेशलिस्ट एंड इनविसलाइन प्रोवाइडर। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स और जटिल दांतों की समस्याओं का आधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। साथ ही डॉक्टर ऋतु यादव MDS एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग और फुल माउथ रिहेबिलिटेशन की विशेषज्ञ। डेंटल एक्सपर्ट्स, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट आशियाना आंगन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 8824232823। डेंटल एक्सपर्ट्स, आपकी मुस्कान हमारी विशेषज्ञता।
2: भिवाड़ी वासियों, अब हर जरूरत की सर्विस सिर्फ एक ऐप पर। मैसन केयर लेकर आया है आपके लिए भरोसेमंद होम और प्रोफेशनल सर्विसेज।
1: बाथरूम डीप क्लीनिंग, किचन डीप क्लीनिंग, पूरे घर की सफाई, ऑफिस क्लीनिंग, जिम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर सर्विस, कैब बुकिंग और बहुत सारी अन्य सेवाएं। अब सब कुछ एक ही ऐप पर।
2: अभी मैस एन केयर ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी पसंद की सर्विस बुक करें।
1: मैस एन केयर, आपका घर हमारी जिम्मेदारी। बुकिंग के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 8824106060।
3: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
4: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
3: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
4: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
1: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
5: अरे कहाँ जा रही हो?
6: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
5: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
6: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
5: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता, जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, टावरू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
7: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो। एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी B83 भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
8: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस 3D सीटी स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
9: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
8: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D सीटी स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351-004500।
10: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, कॉल 8058304500।
11: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
12: होप।

0: इवनिंग है, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त एंड होस्ट आरजे यश, यानी कि आपका खुराफाती यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो अपने साथ में बहुत ही ढेर सारी बातों को लेकर के आता है, लेकिन साहब यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि अपने साथ में रोज पायदान नंबर दो पर लेकर के आता हूँ,
1: मौसम वाली बातें।
0: जी हाँ, मौसम वाली बातें लेकर के आना भी जरूरी है, क्योंकि हर जगह पर मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम एकदम ही कहर मचाए हुए है, और मौसम का कहर तो अब कहर कम जहर ज्यादा लग रहा है। तो चले भाई साहब, जान लेते हैं भिवाड़ी का टेम्परेचर कहाँ पर आकर के आज टिका हुआ है। तो सीधे बात करते हैं उसी वक्त की, यानी कि 7, 8, 9, 10 बजे तक की। तो टेम्परेचर 28 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचे, और अगर उसके बाद की बात की जाए 11, 12, 2 बजे तक की, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर ही टेम्परेचर जा खड़ा होगा। लेकिन अगर दोपहर की बात की जाए तो लगभग 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर था। मतलब भाई साहब 35, 36 से 32, 33 पर आ चुका है, 28, 29 से 22, 23 पर आ चुका है। मतलब अब टेम्परेचर में थोड़ा सा गिरावट होना शुरू हुई है इस बदलते मौसम को देखते हुए, यानी कि मानसून जब से आना शुरू हुए हैं, जब से जगह जगह पर बारिश होना शुरू हुई है, अगल बगल में बारिश होना शुरू हुई है, तब से टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा गया है। देखते हैं भिवाड़ी में बारिश कब तक होती है, होती भी है या नहीं होती है। लेकिन उम्मीद है कि जहाँ जहाँ पर बारिश का कहर देखने को मिला है वो सब लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बस ईश्वर से आप लोग भी कामना करिए, चाहे नेपाल हो, आसाम हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं भी हो, हर जगह पर जहाँ पर बाढ़ की संभावना है या फिर बाढ़ आ चुकी है, वहाँ ईश्वर से आप लोग कामना करें कि किसी के साथ कोई भी प्रकार की समस्या ना हो पाए। मैं भी ईश्वर से यही कामना करूंगा कि सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिलहाल दोस्तों आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूं ही यश को प्यार देते रहिए, और साथ में सुनते रहिए अपनी प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24। यश यू गया और यू आए लेकर और भी ढेर सारी बातें।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी, आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों की आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: क्या कर रही है?
6: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
5: फिर से? अभी तो गई थी।
6: हाँ, फिर से जाना है।
5: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
6: गाड़ी नॉट इन बजट।
5: अरे गांधी मोटर्स है ना?
6: गांधी मोटर्स?
5: हाँ, गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
6: तो कब चले?
5: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
7: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
8: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
9: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
10: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
11: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, Tommy Hilfiger, Oakley, Prada, Jeez, Essilor Crizal, Vision RX और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
10: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
11: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
10: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
12: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
13: हो गोल।

और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट आरजे यश, यानी कि आपका खुर्राफत यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो अपने साथ में बहुत ही ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातों का शोर लेकर के आता है। लेकिन साहब, जब भी यश रेडियो पर होता है तो यश के पास एक बड़ी ही प्यारी सी रिक्वेस्ट होती है। जी हाँ, रिक्वेस्ट आ चुकी है मेरे पास, और रिक्वेस्ट बड़े ही प्यारे से बड़े ही मजेदार से गाने की है। गाना तो मैंने पहले ही गुनगुना दिया है, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये यादें ताजा होने को मिल रही हैं। क्या आप लोग भी भूल गए गुरी को? नहीं ना भाई साहब, कितने प्यारे प्यारे से हिट सॉन्ग निकाले उन्होंने, और सबसे हिट गाना उनमें

मिलो ना, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे से गाने उन्होंने दिए हैं। तो चले भाई साहब, फिलहाल तो ये रिक्वेस्ट बड़ी दूर से नहीं, बड़ी पास से आई है, यानी कि राजस्थान से ही है। और जिनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट, उनका नाम है राहुल, और राहुल कह रहे हैं कि भाई साहब मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी जिसमें गुरी के गाने, बीपराग के गाने और मिलन के गाने, और भी ढेर सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिन्हें भूल गए थे, अखिल के गाने, वो सारे गाने वो बता रहे थे। तो उसमें से मुझे गुरी का गाना भी सबसे बढ़िया लगा और ये वाला गाना मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना रेडियो पर प्ले करवाया जाए। तो चले भाई साहब, ये रहा आपका प्यारा सा गाना रेडियो पर। फिलहाल तो मेरे प्यारे से लाखों लिसनर्स, और भाई आप भी एंजॉय कीजिएगा अपने इस प्यारे से गाने को। फिलहाल तो यश यू जाएगा, यू आएगा लेकर और भी ढेर सारी बातें। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.24।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भीमवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद बाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभचिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ उन्हें आप सभी से निवेदन, जय हिंद जय भारत।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल भिधोड़ी पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिधोड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाए। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाली 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
4: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद जय भिवाड़ी।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, टीएमटी, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी, हेड एंड नेक सर्जरी, Obs and Gynae, Orthopedics, Oral and Maxillofacial Surgery, Cashless Facility, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, Apex Hospital, Dharuhera, Plot Number 5, Sector 6 और भिवाड़ी B83, Bhagat Singh Colony, बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-93222 या फिर 9034-96-9731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
7: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
8: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
7: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
9: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
10: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
9: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं, निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
10: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
9: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उजला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
11: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है, CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
12: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
11: बोल लालंकार CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
13: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
14: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
15: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
16: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
17: और लीजिए भाई साहब एक बार फिर से गुड वाली इवनिंग है, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त एंड होस्ट आरजे यश, यानी कि आपका खुर्राफत यश। और भाई साहब आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो बहुत ही ढेर सारी बातों को लेकर के आता है, लेकिन अब वक्त है देश और दुनिया की उन बड़ी खबरों का जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला, यानी कि खबर वही अंदाज यश का। आइए जानते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर अर्थव्यवस्था से। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि रुपए ने दिखाई मजबूती, विदेशी मुद्रा में बड़े निवेश के बीच भारतीय रुपया करीब 94.30 प्रति डॉलर के स्तर तक मजबूत हुआ है। वहीं शेयर बाजार में भी शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली है, यानी बाजार से आज की शुरुआत हुई है पॉजिटिव संकेतों के साथ। दूसरी बड़ी खबर राजस्थान में बारिश। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान में मॉनसून आना शुरू हो चुके हैं, तो राजस्थान में मॉनसून फिर एक्टिव। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है 4 से 7 सितंबर के बीच, खास तौर पर कोटा संभाग और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मौसम का अपडेट जरूर देख लीजिए। तीसरी और सबसे बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। दोस्तों महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन तेज हो चुका है, यानी मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन 5वें दिन भी जारी है और प्रदर्शन का असर राज्य के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच मांगों को लेकर गतिरोध बना हुआ है और अब सबकी नजर आगे की बातचीत और फैसले पर है। तो दोस्तों ये थी आज की 3 बड़ी बड़ी खबरें। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरों के लिए जुड़े रहिए 90.8 FM 24 के साथ, आवाज वही जो खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाए। और यश का तो काम है आपको खबरें बताना। चलिए फिलहाल आप यहाँ पर एंजॉय कीजिएगा इस प्यारे से गाने को, यश यू जाएगा और यू आएगा लेकर और भी ढेर सारी बातें। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24। यश यू गया और शिव आया।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
2: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
1: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
3: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23 सेक्टर 5 भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपनी मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव

0: नागरिक सुविधाएं और निवासियों की आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल भिदुड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्ज्वल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
2: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन, नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल। आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार, आशीर्वाद, वोट के रूप में, सपोर्ट के रूप में आने वाले 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
3: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने, वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूं। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूं और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं, हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका। जय हिंद, जय भिवाड़ी।
4: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
5: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
4: गुरुग्राम? इतनी दूर?
5: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
4: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
5: मतलब?
4: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
5: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
4: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 Bites डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 Bites डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
6: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
7: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
8: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
4: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
5: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0% डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
9: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
10: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV,

0: सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
1: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
0: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.macs.in पर।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
3: हेलो, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट आरजे यश, यानी कि आपका खुर्राफत यश। और भाई साहब, मैंने आते ही बोला था कि आज हम आपको फिर से लेकर के चलेंगे चुनावी गलियों की ओर। जी हाँ, क्योंकि चुनावी माहौल पूरी भिवाड़ी के अंदर फैला हुआ है, चूंकि पार्षदी के चुनाव है और ऐसे में लोग परेशान है कि हम किसका चुनाव करें। सही कैंडिडेट का चुनाव करना जरूरी है, चूंकि अब तक जो उन्होंने इन 5 से 7 सालों में देखा, चूंकि चुनाव लेट हो गया था तो इस बार 5 से 7 साल तक का कार्यकाल हो गया है। काम करते करते 7 साल हो गई है, लेकिन 7 सालों में लोग कह रहे हैं कि 7 दिन के बराबर या 7 महीने के बराबर भी काम नहीं किया गया है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत काम होना शुरू हुआ था, नए नए में दिखाने के लिए हुआ था या कैसे हुआ था नहीं पता, लेकिन हुआ था। थोड़ा बहुत साफ सफाई होना शुरू हुई थी, गंदगी नहीं रहती थी, लेकिन तब से लेकर के आज तक हमें सिर्फ अपने घरों के बाहर गंदगी, जल भराव, टूटी सड़कें और भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये हर वार्ड की दशा है। हाँ, 1-2 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर लोगों ने तारीफ की है कि नहीं भाई, पार्षद हो तो हमारे वार्ड जैसे हों, क्योंकि उन्होंने वाकई बहुत काम किया हुआ है और उनका काम देखकर लगता भी है कि हाँ भाई किया हुआ है, क्योंकि हमारी टीम खुद जा करके लोगों से बात कर रही है, वार्ड का मुआयना कर रही है, वार्ड को देख रही है क्या वास्तव में वार्ड साफ है या नहीं है, वार्ड में किन किन चीजों की समस्या है, किन किन चीजों की समस्या नहीं है, ये सारी चीजें। और जाकर के देखने को मिला तो यही मिला कि हालत तो वास्तव में खस्ता है, और जब हर वार्ड की हालत खस्ता होगी तो भिवाड़ी की हालत सुधरेगी भी कैसे। कुछ लोग बाहर से आकर के वहां किराए से रह रहे हैं, उनका भी कहना है कि हम गलत जगह आकर के फंस गए हैं, मतलब हमें नहीं पता था कि भिवाड़ी के अंदर इतनी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा। मतलब जो लोग अपने आप को सुधारने के लिए गांव से निकल करके एक अच्छी जगह में इंडस्ट्रियल हब में आना चाहते थे कि यहां पर हमारे जिंदगी का सुधार हो सकता है, ऐसा सोच करके आए थे, लेकिन अब वो सारी चीजें फेल होती नजर आ रही है, चूंकि सिस्टम ही फेल होता नजर आ रहा है। चले, इस पर मैं नहीं बल्कि हम लोगों के साथ मिलकर के बातें करेंगे और लोगों की जुबानी सुनेंगे कि आखिर वो कितने परेशान है, वो क्या कहते हैं, वो बातें आप लोग तो आप लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि वास्तव में परेशानी तो लोग उठा रहे हैं। चलिए, चुनाव से पहले की एक और झलक आपको सुनवाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गाना आपको सुनवाता हूँ। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24 यश योगा, और यू आए लेकर बहुत ही ढेर सारी आवाजें।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
4: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
3: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहाँ प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
4: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
5: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
6: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
7: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
8: नमस्कार साथियों, मैं किशन नागर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 और 23, सेक्टर 5, भिवाड़ी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले कार्यकाल में हमने अपने वार्डों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया है। कोविड के दौरान भी हम जो है काफी अच्छा करने में सफल रहे हैं। सम्मानित जनता जनार्दन सब जानती है, अब आगे नगर परिषद 2026 का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। मैं अपनी जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूं कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप लोग हमेशा से हमें देते आ रहे हैं, उन्हें वोटों के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर विजय श्री दिलाएं। आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं और रहूंगा। साथ ही मैं अपने मित्रजन एवं शुभ चिंतकों से भी निवेदन करूंगा कि वह आप भी मेरे वार्ड में जो हर संभव मदद हो सके वह करने का प्रयास करें। पुनः आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
9: मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना कौरपाल विधोड़ी, पिछले 15 वर्षों से आशियाना आंगन और वार्ड नंबर 4 का निवासी होने के नाते मैं हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। मैं आपके बीच कोई बड़ा नेता बनकर नहीं बल्कि आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक बनकर आया हूँ। आज मैं आपसे केवल वोट नहीं बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हमारे वार्ड और भिवाड़ी की सोसाइटियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, गंदे पानी की समस्या, प्रदूषण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवासियों के आधिकारिक रक्षा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर समस्या मेरी समस्या होगी और उसके समाधान के लिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं ये संकल्प भी लेता हूं कि भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों में राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 को पूर्ण रूप से कार्यशील करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निवासी को उसके अधिकार और पारदर्शिता व्यवस्था मिल सके। मेरा मानना है कि पार्षद बनना कोई पद प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी उठाना है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरे दरवाजा हर समय आपके लिए खुला रहेगा। मेरे प्यारे वार्डवासियों, ये चुनाव केवल कौरपाल विधुड़ी का चुनाव नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के सम्मान, विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। 9 सितंबर 2026 को अपने बेटे, अपने भाई और अपने प्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपके विश्वास मेरी ताकत, आपका आशीर्वाद मेरी जीत, वार्ड नंबर 4 का विकास हमारा संकल्प। धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
10: नमस्कार, मैं अमित नाहटा जैन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी चुनाव चिन्ह कमल आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में आपके बीच में दूसरी बार चुनाव मैदान में हूं। आपके सहयोग से पिछले 5 सालों से मैं आपके सुख और दुख के साथ सदैव रहा हूं। वार्ड की सभी समस्या को मैंने प्रायोरिटी से उठाया है और यथोचित समाधान भी करवाने में सफल भी रहा हूं। आप सभी के आदेश और आश्वासन से अपने पुनः दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को अपनी अंतरात्मा से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव की तरह इस बार भी आप सभी के साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे अपने प्यार आशीर्वाद वोट के रूप में सपोर्ट के रूप में आने वाले 9 सितंबर को भारी मतों से विजय बनाएं। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये प्रत्येक वार्ड वासियों की जीत होगी। जय श्री राम।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
11: नमस्ते भिवाड़ी, नमस्ते मेरे वार्ड नंबर 4। आज मैं भूमिका आप सभी के सामने वोट नहीं, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आई हूँ। मैं इस पद पर पहली बार निकल चुकी हूँ और जैसे कि विगत कई सालों में हम देख रहे हैं हमारी भिवाड़ी में कई समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की, नाली सफाई की, सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो हमें इन सब समस्याओं का डट के सामना करना है और मैं इन सब चीजों में खरी तभी उतर पाऊंगी जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। मुझे अपनी बेटी मानकर, मुझे अपनी बहन मानकर, मुझे अपने भिवाड़ी के वार्ड नंबर 4 को आदर्श वार्ड बनाने में मेरी पूरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे वोट दें और हाथ के पंजे पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबके आशीर्वाद के साथ भूमिका, जय हिंद जय भिवाड़ी।
12: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
13: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
14: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी,
15: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
14: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
16: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहाँ पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहाँ 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
17: बोलिए मुझे जीजा जी।
18: क्या जी?
17: क्या आपने लगाई PNG?
18: हाँ जी।
17: क्यों जी?
18: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप
17: और सेफ्टी
18: की चिंता स्टॉप
17: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप,
18: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
17: हाँ जी
18: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप,
19: नॉनस्टॉप।
20: मैं भी लगवाऊंगी सीएनजी।
21: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है पीएनजी।
20: बिल्कुल सही।
21: तो आप भी अपनाओ पीएनजी
20: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
22: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
23: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
22: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
23: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
22: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
24: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
25: अरे इसमें क्या है?
24: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
25: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
24: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
25: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
24: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
25: इनका एड्रेस क्या है?
24: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: लीजिए भाई साहब एक बार फिर से हाजिर है आपका दोस्त होस्ट आरजे यश, यानी कि आपका खुर्राफाती यश। और भाई साहब आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो अपने साथ में बहुत ही ढेर सारी आवाजों को लेकर के आता है। पता है क्यों? क्योंकि भाई साहब चल रहे हैं भिवाड़ी के अंदर चुनाव और चुनाव की सरगर्मियां खूब सर चढ़ करके बोल रही हैं। और ऐसे में हम पहुंच जाते हैं बाढ़ में लोगों से बात करने के लिए कि आखिर वो किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं, हमारे साथ में मैम जुड़ी हुई है। मैम क्या आपके वार्ड में काम ठीक ठाक चल रहा है या फिर आप लोग भी परेशान?
26: बहुत गंदे से गंदा वार्ड हुआ है, ये देख लीजिए कीचड़ कितनी है, नालियां भरी रहती है यहाँ पे। हर तीसरे दिन इतनी गंदी स्मेल, मच्छर, पानी में भी बहुत गंदगी आती है, कोई विकास नहीं है यहाँ पे, बहुत ज्यादा गंदा ही गंदा है बस।
1: तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इन 5 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ आपके वार्ड में, न साफ सफाई न सड़कों पर, मतलब यूं ही 5 सालों से आपका वार्ड डला हुआ है?
26: नहीं है, बल्कि और गंदगी बढ़ी है 5 सालों में, और ज्यादा गंदगी बढ़ी है।
1: तो फिर आपने अपने वार्ड पार्षद से कोई शिकायत वगैरह नहीं कि भाई काम करवाओ, सफाई करवाओ?
26: बोलते हैं कोई सुनाई नहीं है भैया, कोई सुना।
1: तो अभी पार्षदी के चुनाव हैं और जब लोग वोट मांगने के लिए आएंगे, वार्ड पार्षद जो चुनाव में खड़े होंगे, तो उनसे आप क्या जवाब मांगेंगे कि भाई सफाई तो हुई नहीं है, किस बात का वोट, तो क्या कहेंगे आप उनसे?
26: यही जवाब लेगी कि क्या गंदगी है, क्या देख लीजिए ये सब कुछ है, ना नाली साफ होती है, ये कीचड़ निकाल के गए हुए है, सारा गंदगी सारे घर के अंदर आती है भैया।
1: तो दोस्तों सुना आपने कैसे लोग परेशान है, लोग गुहार कर रहे हैं कि भाई साहब सफाई करवा दो, पानी की व्यवस्था ठीक करवा दो। और अभी पार्षदी के चुनाव है और पार्षद साहब आएंगे उनके घर पर वोट मांगने, और उनके घर के बाहर ही कचरा डला हुआ मिलेगा, घर के बाहर ही पानी भरा हुआ मिलेगा, तो किस हिसाब से वोट मांगेंगे, क्या कहेंगे उनसे जाकर के, ये तो हमें नहीं पता। बहरहाल और सुनते हैं प्यारी प्यारी सी आवाजें, लेकिन उससे पहले आपको सुना होगा यहाँ पर इस प्यारे से गाने को, यश यू गया और यू आया लेकर और भी ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर भिवाड़ी का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24।